अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म जोश से, आवाजें अलका याग्निक और उदित नारायण की, संगीत से सजाया है अनु मलिक ने, सब दृश्य समीर का।

अगला गीत लीजिए, सुनिए फिल्म बधाई हो से, आवाजें गुरु रंधावा और नेहा कक्कड़ की, संगीत से सजाया तनिष्क बख्शी ने, शब्द रचना मेलोडी का।

0: बनके।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सांझ सरगम आकाशवाणी रांची से। अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म परम सुंदरी से, आवाजें सोनू निगम, कृष्ण कली साह और सचिन जिगर की, संग सब रचना अमिताभ भट्टाचार्य का।

अगला गीत लीजिए सुनिए फिल्म स्काई फोर्स से, आवाजें सत्येंद्र सत्राज और जारा की। संगीत से सजाया है तनिष्क बख्शी ने, शब्द रचना श्लोक लाल का।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। हमारे शुरू की घड़ी में 5 बजने वाले हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं आराधना कुमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 137वां एपिसोड होगा। मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR तथा दूरदर्शन न्यूज की वेबसाइट पर किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। श्री मरांडी ने रांची के अरगोड़ा इलाके में खूंटी पुलिस की छापेमारी से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए आरोप लगाया कि बिना FIR और सर्च वारंट के पुलिस ने घर में प्रवेश करने का प्रयास किया। श्री मरांडी ने मुख्यमंत्री को आगाह करते हुए कहा कि पुलिस को नसीहत दिया जाए कि वर्दी कानून से ऊपर नहीं है। गिरडी पुलिस की पहल आपका मोबाइल फिर से आपका के तहत आज जिले भर के 112 लोगों को उनके खोए हुए मोबाइल फोन वापस सौंपे गए। इस दौरान मोबाइल धारकों ने गिरडी पुलिस के प्रति आभार जताया है। इस मौके पर जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि अब तक सैकड़ों लोगों के उनके मोबाइल वापस लौटाए जा चुके हैं, जिससे लोगों के चेहरे पर मुस्कान वापस आई है। देश के कई राज्यों में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। केंद्र सरकार के जारी निर्देश के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने राज्य के सभी सिविल सर्जन, मेडिकल कॉलेजों और जिला सर्विसेज पदाधिकारियों को अलर्ट कर रहने और संक्रमण की निगरानी रखने का निर्देश जारी किया है। बाबा नगरी देवघर में आज से भादो मेला शुरू हो गया है। मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भादो मेले के सफल संचालन को लेकर कल सरदार पंडा धर्म रक्षणी सभा तथा तीर्थ पुरोहित समाज के प्रतिनिधियों के साथ जिला प्रशासन ने बैठक कर श्रद्धालुओं की सेवा सुविधा और सुरक्षा निश्चित करने पर बल दिया। इधर राजकीय श्रावणी मेले के समापन के बाद आज से बाबा वैद्यनाथ धाम में अर्घा को भी हटा दिया गया है, जिससे श्रद्धालु अब बाबा को सीधे स्पर्श कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का चाईवासा केंद्र है। FM के 101.7 MHz पर शाम के 5:02 हो रहे हैं। संध्याकालीन सभा में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आइए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम विवरण के बारे में जानते हैं।

अब से कुछ देर बाद यानी कि 5:05 पर सुनेगा कार्यक्रम गुलदस्ता। आज के इस गुलदस्ता कार्यक्रम में आप सुनेंगे भूले बिसरे गीत। 5:30 पर आप सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। 6:00 होगा मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 6:02 पर हम आपको सुनवाएंगे बंगला कार्यक्रम सातरंग। 6:30 पर सुनिए कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य, चर्चा होगी स्वाइन फ्लू। भेंटवार्ता सुनिएगा एनीमिया कारण व बचाव। भेंटवार्ताकार होंगे डॉक्टर शिव चरण हांसदा और इनसे बातें करेंगे रमेश कुमार दास। 6:55 पर हम आपको ले चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल। 7:15 पर सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम श्रोताओं की फरमाइश पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद। 7:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। चर्चा होगी राष्ट्रीय खेल दिवस, धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण कैसे करें। होलोकित होगा बलभद्र आल्डा और साथियों के स्वर में। पंचपगनीय लोकगीत का आनंद लीजिएगा ब्रजमोहन लाल लोहार

ब्रजमोहन लोहरा और साथियों के स्वर में। 8 बजे आप सुनेंगे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। 8:45 पर हम आपको ले चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुन सकेंगे समाचार संध्या क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में। 9:15 पर सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम, जिसे रिले किया जाएगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 10 बजे होगा गजलों का कार्यक्रम महफिल। 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। 11 बजे हिंदी में समाचार होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में। और 11:10 पर हमारी आज की सभा संपन्न होगी। तो ये थी आज प्रसारित होने वाली कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM 101.7 MHz पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम गुलदस्ता। गुलदस्ता कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूँ अवनीश कुमार सिन्हा। पहला गाना है फिल्म नीला आकाश से,

अभी आपने सुना फिल्म नीला आकाश का ये नगमा। आवाज़ें थी आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की। और आइए सुनते हैं फिल्म तीसरी मंजिल। इस फिल्म का गाना आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी की है।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: और यही सुनते हैं फिल्म गुमराह का ये नगमा, आवाज़ें महेंद्र कपूर की है।

श्रोता सुन रहे हैं गुलदस्ता कार्यक्रम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से। अगला गाना है फिल्म आज और कल से। गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफ़ी।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते फिल्म नमक हराम का ये नगमा, आवाजें हैं किशोर कुमार की।

इस गीत के साथ ही श्रोता, हमारा आज का गुलदस्ता कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.7 MHz पर। कुछ ही पल में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का अगला कार्यक्रम।

आइए सुनते हैं फिल्म पतंगा का ये गाना, आवाजें हैं शमशाद बेगम और सी रामचंद्र की।

अभी आपने सुना फिल्म एक महल हो सपनों का। गायक लगा थी लता मंगेशकर और आइए सुनते हैं फिल्म हम किसी से कम नहीं। गायक लगा हैं मोहम्मद रफ़ी और सुषमा श्रेष्ठ।

0: 101.7 MHz पर, और आइए आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुन सकेंगे मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं आराधना कुमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 137वां एपिसोड होगा। मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR तथा दूरदर्शन न्यूज की वेबसाइट पर किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू संगठन की मजबूती और पार्टी का जनाधार की मुहिम में लगातार जुटे हुए हैं। उन्होंने आज रांची के ओरमांझी स्थित आवास पर खिजरी विधानसभा की संगठनात्मक बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। इस मौके पर पार्टी संगठन को विधानसभा क्षेत्र में धारदार बनाने और समसामयिक विषयों के अलावा भावी कार्यक्रमों पर भी चर्चा हुई। माध्यमिक आचार्य नियुक्ति मामले में दोबारा परीक्षा लिए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सुनवाई के बाद मामले में मुख्य सचिव को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। साथ ही अदालत ने मामले की जांच CID को सौंपने और समय सीमा में जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय खेल दिवस पर आज राजधानी रांची समेत राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर रांची के गांधीनगर में इंटर स्टेट पारा फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान पारा फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मुकेश कंचन ने कहा कि इस खेल में पहली बार वैसे दिव्यांग खिलाड़ी शामिल हुए हैं जो दिव्यांग के साथ साथ मानसिक रूप से भी कमजोर हैं। ओडिशा के मयूरगंज जिले में हो रही लगातार बारिश का असर पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले में भी दिखाई देने लगा है। जिले में रुक रुक कर हो रही बारिश को से खरकई और स्वर्णरेखा नदियों के जलस्तर में तेजी से वृद्धि दर्ज की गई है। जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए जिला प्रशासन ने नदी किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। आइए सुनते हैं बंगला कार्यक्रम सात रंग।

0: कार्यक्रम में आपका स्वागत सुनने वाले सभी श्रोताओं को रमेश दास का नमस्कार। श्रोताओं, हम अपने आपका स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत आपको हर बार स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न जानकारियां देते हैं और खासकर ऐसी बीमारियों की जानकारी हम देने की कोशिश करते हैं जिससे आपको लाभ हो। तो चलिए आज कुछ ऐसे ही विषय को लेकर हम कुछ बातें करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर शिवचरण हांसदा जी, CSC चैवासा और कुपोषण उपचार केंद्र चैवासा के प्रभारी हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: आज हम अपने श्रोताओं को जानकारी देना चाहते हैं कि हर बार हम सुनते हैं एनीमिया के बारे में, तो ये एनीमिया है क्या?
1: इस प्रोग्राम के माध्यम जैसे अभी हमने बात शुरू किया कि एनीमिया क्या है, तो मैं बताना चाहूँगा शरीर में खून की कमी या हीमोग्लोबिन का जो लेवल है या मापदंड मानक के अनुसार जितना होना चाहिए उससे कम होगा तब उसको एनीमिया के रूप में दर्शाते हैं या मानते हैं।
0: बचाव कैसे करेंगे?
1: बचाव के लिए तो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें हम लोग बोलते हैं कि आपको खाने में जो है हरी साग सब्जियां लेनी है और बहुत ही कॉमन चीज़ जैसे हम लोग सरकारी कार्यक्रम के तहत हमेशा 6 महीने में हम लोग डिवॉर्मिंग या फिर कृमि मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं, तो इस तरह से पेट अगर आपका साफ रहता है कृमि के माध्यम से, कृमि को हमारे शरीर से बाहर करके, तो ये एक बहुत अच्छा बचाव का उपाय हो सकता है। दूसरा है कि सरकार की तरफ से हमारे यहाँ एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम जो चला रहे हैं उसमें हम लोग 6 महीने से लेकर के 19 साल तक के बच्चे, ये इवन जो गर्भवती महिला है सभी के लिए हम लोग जो है ना आयरन गोली की व्यवस्था करते हैं। तो जैसे आप बताना चाहेंगे 6 से 29 माह के बच्चों के लिए हम लोग सिरप देते हैं, सप्ताह में 2 बार देने की बात करते हैं। उसी तरह से 5 से 9 साल तक के बच्चे जो आंगनबाड़ी में मिलेंगे उनको पिंक टैबलेट देने की बात करते हैं। 10 से 19 साल तक के बच्चे जो ब्लू टैबलेट खाते हैं जो स्कूल में मिलेंगे आपको, उनके लिए हम लोग ऑलरेडी BRC को दवाई उपलब्ध करा देते हैं। उसी तरह से 19 साल से ऊपर की जो भी महिला गर्भवती हो या फिर जो अभी कंसीव नहीं की है उनके लिए हम लोग जो है ना खून की स्थिति या एनीमिया के आधार से उसको हमको दवाई की उपलब्ध कराते हैं। उसी तरह से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो प्रेगनेंसी के दौरान हम लोग बोलते हैं कि उसमें उनको डिमांड वगैरह जो है सभी तरह का डिमांड उनको ज़्यादा रहता है, तो उसमें आयरन और विटामिन B12 या फॉलिक एसिड ये कम रहता है, तो ये रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए इनको समय रहते खान पान पर ध्यान देना चाहिए। उसी तरह से कृमि मुक्ति के रूप में पहले से इनको दवाई खा लेनी चाहिए और रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद से उनको फॉलिक एसिड देना बहुत जरूरी होता है, जो कि हमारे इस क्षेत्र में लोग जो है रजिस्ट्रेशन के नाम पे या फिर बताने के नाम पे संकोच करते हैं, उनको लगता है कि हम बताएंगे तो नज़र लग जाएगा, जो बिल्कुल ये गलत बात है। हम इस प्रोग्राम के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारे जितने भी श्रोता हैं, अपने जितने घर के महिलाएँ या फिर अगल बगल के जो भी है उनको जब ये खुशखबरी मिलती है तो उनको रजिस्ट्रेशन तुरंत करवा लेना है और फॉलिक एसिड की गोली लेनी है। अब फॉलिक एसिड की गोली आपको बताना चाहेंगे इतना इम्पोर्टेंट, अगर आप शुरुआत के दिनों में शुरू करेंगे तो कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि जब बच्चा पेट में बन रहा होता है अगर समय रहते फॉलिक एसिड नहीं मिलता है तो एक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बोलते हैं और जो कि आपको जन्म के बाद जो है पीछे गिल्टी जैसा अच्छा खासा मांस दिखाई देता है जो कभी भी ठीक नहीं हो सकता, तो इनसे बचने के लिए हम लोग को आले रजिस्ट्रेशन और फॉलिक एसिड की गोली खानी बहुत जरूरी है।
0: अच्छा, एक बात हम और जानना चाहेंगे कि एनीमिया के लक्षण क्या क्या हैं?
1: तो इनका लक्षण आए दिन हम सबको महसूस करते हैं लेकिन हम बताना चाहेंगे, जैसे मरीज को जो महसूस होता है उसमें उनको थकावट लगता है और जब खून की कमी होती है तो उनको बहुत हल्का महसूस होता है और कुछ ज़्यादा ही कम रहेगा तो उसमें उसको सांस फूलने लगता है और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जो हृदय रोग के मरीज होते हैं कभी कभी इसमें एंजाइनल या छाती में दर्द जो ना ज़्यादा उठने लगता है। कभी कभी देखिएगा हाथ पैर वगैरह सब जो जकड़न जैसा या अजीब टाइप का जो भारीपन महसूस होता है, ये सारे लक्षण होते हैं और ये तो हम उनके तरफ से कह रहे हैं जो पेशेंट है उनको महसूस होता है। और दूसरा जैसे एज अ डॉक्टर हम अपने जो सामने मरीज को देख पाते हैं उसमें सबसे पहले तो जैसे हमारा जो ओंठ है या फिर हमारा आँख का नीचे का जो ये है स्क्लेरा ये बोलते हैं तो उसमें ये लालिमा या लालीपन कम हो जाता है और दूसरा है कि उसको सांस जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि सांस फूल रहा है तो उसको जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है उसको अपने शरीर में ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए। उसी तरह से धड़कन वगैरह भी ज़्यादा तेज होने लगता है, पैर में सूजन आने लगेगा, दोनों पैर में सूजन आएगा, उसके साथ ही BP जो है वो घट जाता है और अगर हम अपने मेडिकल भाषा की तरफ से बात करेंगे तो कभी कभी गले के पास हमारा जो नर्व नस होता है, वेन होता है, हम लोग जुगला वेनस प्रेशर करते हैं, उसमें बाहर से आप देखिएगा उसमें जो है ना धड़कता हुआ दिखाई देगा, हम लोग उसको इंक्रीज जुगलर वेनस पल्सेशन बोलते हैं। और उसके साथ ही कभी कभी जैसे डॉक्टर अगर छाती में हृदय के पास अगर आला लगा करके देखते हैं तो उसमें जो है अपना धड़कन के अलावा कुछ उसमें एक्स्ट्रा जो है साउंड सुनाई देता है, हम लोग उसको मर्मर बोलते हैं।
0: अच्छा,
1: तो ये सारे लक्षण आपको एनीमिया के मरीज में दिखाई देंगे।
0: अच्छा, ये जो है एनीमिया, इसका कारण क्या है?
1: अच्छा, कारण में भी ये हमने इसको दो कैटेगरी में बांटा है। तो जैसे कि पहले हमने बताया कि ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह लोगों को खाना होता है लेकिन लोग नहीं खाते हैं, तो इसमें अगर टेक्निकली बोला जाए तो शरीर में आयरन की मात्रा, B12 की मात्रा या फॉलिक एसिड की मात्रा, ये कम होने लगती है। और दूसरा है कि जैसे अगर कोई लंबे समय से बीमार होता है, जैसे कि TB के मरीज में, तो ये जो है उसमें RBC जो हम नॉर्मली हम बोलते हैं कि उसका RBC का जो लाइफ 120 होता है, 120 दिन होता है, लेकिन इसमें जो है ये टूटने के चलते जो है फिर खून की कमी आने लगती है।
0: अच्छा,
1: उसी तरह से जो है अस्थि मज्जा से हमारा एक्चुअली खून बनता है तो वहाँ भी प्रोडक्शन जो है ना कम होने लगता है, ये एक तरह से जो है कैंसर सेल की तरफ इंडिकेट कर रहा है, जो लाइलाज बीमारी जैसा है। अभी हमारे यहाँ एक बहुत ही कॉमन किडनी संबंधित बीमारी जो है, जिसके जो उसका जो मेन कारण अभी हमारे सामने जो है डायबिटीज़ है, और थोड़ी सी हमारी जो आदत ख़राब है उसमें कभी दर्द होता है तो हम लोग तो पेन किलर वगैरह खाते हैं, तो इसके चलते जो है किडनी ख़राब होता है। तो किडनी ख़राब होने से क्या होता है कि एक एरिथ्रोप्रोटीन नाम का जो हमारा जो शरीर में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है एंजाइम का, तो वो नहीं रहने से या उसका डिक्रीज प्रोडक्शन के चलते जो है ना खून का बनना कम हो जाता है। दूसरा है कि एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट, आज के समय में हम लोग फास्ट लाइफ की तरफ जा रहे हैं तो हम लोग पिज्जा बर्गर ये वो जो बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उसमें कैंसर की कोशिका अगर शरीर में किसी तरह से बन गई तो वो जो है नॉर्मल कोशिका को भी प्रभावित करने लगता है, जिसके चलते जो है हीमोग्लोबिन कम होने लगता है। और एक और इम्पॉर्टेंट है जिसमें कि अस्थि मज्जा में खून बन रहा है लेकिन शरीर से जो है बहुत तेज़ी से खून निकल रहा है, तो उसमें बहुत सिंपल सा उदाहरण हमारा जैसे कहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है या किसी तरह का कट जाता शरीर में कट जाता है, बहुत ज़्यादा खून बह जाता है, तो सडन लॉस जो है ना ये एक कारण बनता है। दूसरा इस लोकल लेवल में हम लोग पीले या स्प्लीन जो बोलते हैं, वो स्प्लीन के बढ़ने के चलते जो है ना खून का जो टूटना होता है ये तेज़ी से होने लगता है, तो इसके चलते भी एक कारण बनता है। उसमें हाइपर स्प्लिनिज्म या जो पिलाई का बढ़ना जो बोलते हैं कारण, तो मलेरिया हो सकता है, थैलेसीमिया हो सकता है, और तरह का कुछ कुछ हमारा जो है टाइफाइड भी है, और कैंसर सेल वगैरह या ल्यूकेमिया जो हम लोग कैंसर बीमारी के रूप में जानते हैं, इस तरह का कुछ कुछ है, या किसी अन्य इन्फेक्शन के चलते जिसमें जब खून टूटने के कगार खून ज़्यादा मात्रा में टूटता है, तो ये सारा जो है कारण के रूप में गिना जा सकता है।
0: अच्छा, एक बात हम जानना चाहेंगे कि जब हम गांव की ओर जाते हैं और आप भी जब गांव की ओर जाते हैं तो अक्सर हमारे इस क्षेत्र में अगर हम देखें तो यहाँ एनीमिया बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसका कारण आप क्या मानते हैं?
1: सबसे पहले तो हम लोग जैसे अभी कुपोषण उपचार केंद्र का हम इंचार्ज या नोडल रहता हूँ, तो सबसे पहले हमारे खान पान के दोष को देंगे, एक गुणवत्ता युक्त जो भोजन होना चाहिए वो हम अपने बच्चों को या परिवार को उपलब्ध नहीं करा पा सकते, जो भी कारण है वो हो सकता है उनका पारिवारिक स्थिति अच्छा नहीं हो। दूसरा, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता नहीं होने के चलते जैसे हम लोग जो सरकार की तरफ से प्रोग्राम चलाते हैं, हर कुछ जो है ना साफ सफाई के साथ खाना या करना बोलते हैं, ये सारी चीज़ें प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होता है। और विशेषकर इस क्षेत्र में जैसे बहुत सारे क्रोनिक इन्फेक्शन होते हैं तो उनका समय रहते ट्रीटमेंट नहीं हो पाना या वो पहचान में नहीं आना या अस्पताल नहीं आना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है, जैसे कि हम लोग कुपोषित बच्चों के केस में देख पाते हैं, तो ये सारी बातें हैं।
0: एक बात हम और जानना चाहेंगे कि खासकर अगर हम गांव में देखते हैं तो गांव में आपको तो मिल जाता है, चावल मिल जाता है, सब्जी भी अगर अगर हम देखें तो सब्जी के नाम पर आप

0: कोई भी साग आपको मिल जाता है, लेकिन क्या इससे ये बहुत होता है एनीमिया से बचने के लिए?
1: चूंकि अभी इकोनॉमिक स्थिति को देखते हुए बात किया जाए तो अगर खाने के लिए शरीर को कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है, प्रोटीन चाहिए होता है, फैट चाहिए होता है। अगर अब एनीमिया के सेंस में बात करेंगे तो हमको ग्रीन वेजिटेबल की बात करना है, तो ग्रीन वेजिटेबल तो गांव के स्तर में तो हमेशा मिलता है। इवन जैसे हम लोग जो बोलते हैं मुनगा साग या सजना वगैरह, ये भी बहुत अच्छा प्रचुर मात्रा पाया जाता है। हमारा जो पालक का सब्जी साग होता है, फिर हम लोग चौलाई साग वगैरह जो बोलते हैं, या फिर गांव के स्तर में आपको मूली वगैरह आज के समय में मिलने लगेंगे। तो गांव के स्तर में ये सारा चीज़ बहुत सारा मिलता है, लेकिन ये लोग क्या है कि अपने स्तर से भी कुछ प्रयास एक्स्ट्रा नहीं कर पाते हैं, या फिर जो सब्जी वगैरह का खेती हम समझते हैं अगर अपने प्रयास से भी कुछ एक्स्ट्रा करने लगेंगे तो लोग अपने साथ साथ कुछ बेचने दो पैसा कमा भी सकते हैं।
0: अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे, ये बच्चों में तो एनीमिया देखा जाता है, क्या बड़ों में भी देखा जाता है?
1: जी जी बिल्कुल देखा जाता है। अच्छा। जैसे हमने बताया कि कुछ कुछ क्रोनिक इलनेस मतलब लंबे समय से जो बीमारी स्थिति होती है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस की, तो वो ट्यूबरक्लोसिस के चलते क्या होता है कि शरीर में जो खून की कमी होती है या फिर जैसे उसको जो रिक्वायरमेंट होता है वो उसको नहीं मिल पाता समय रहते। अगर समय रहते उसका पहले तो अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है या उसको ट्रीटमेंट में डाल देते, उसके बाद कुछ उसको विटामिन के रूप में सप्लीमेंटेशन मिल जाएगा, तो ये उसके लिए बहुत बड़ा बात हो जाएगा। दूसरा एक चीज़ और बताना चाहेंगे, इसमें कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया, जैसे हम लोग RBC की बात करते हैं, लाल रक्तकण की बात करते हैं, तो कभी कभी क्या है ना, लाल रक्तकण हमारा जो है ना उसको जो है ना अंडाकार बोला जाता है, उस आकार का होता है, तो उसमें उसका जो बाहरी लेयर जो कवरिंग होता है, जब लोग मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसका जो कवरिंग है उसमें एबनॉर्मलिटी पाया जाता है, तो उसके चलते जो है ना उसका जो शेप बिगड़ने के चलते वो कभी भी नॉर्मल रूप नहीं ले पाता, जिसके चलते जो है ना बहुत कम समय में या फिर बहुत ज़्यादा होगा तो आयु जो है ना एकदम लिमिट सा हो जाता है। और एक जैसे हम इस क्षेत्र में या फिर यहाँ पे देखते हैं थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया जो है ये हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है।
0: अच्छा।
1: तो ये जो है थैलेसीमिया की जहाँ तक बात होती है तो उसमें खून तो बनता है, लेकिन उसमें जो जैसे हम लोग थैलेसीमिया के सेंस हम लोग बोलते हैं एमिनो एसिड जो है ये सिक्वेंशियल जैसा रखा होना चाहिए वो नहीं हो पाता, जिसके चलते थैलेसीमिया का रूप ले लेता है। और ये भी जो है उसमें भी हाइपरस्प्लेनिज्म दिखाई देता है, जिसमें जो है RBC का टूटना ज़्यादा होता है। तो अगर शुरुआती दिनों में ये ठीक से हम लोग उसको आगे ले जा पाए तो उसमें आयरन का लोड उसमें ज़्यादा रहता है, तो डिस्पेरॉक्समिन वगैरह सब जो है ना जो कि हमारे सदर अस्पताल में उपलब्ध है, ये रेगुलर बेसिस में अगर फॉलोअप में आते हैं तो उनका निश्चित रूप से आगे बढ़ने का संभावना बनेगा। और दूसरा है कि जैसे अभी कैंसर की बात करें तो आप भी समझ सकते हैं इस बात को कि यहाँ पे फास्ट फूड के दौर में लोग जो है ना घर का खाना कम खाते हैं, ठेला या बाहर का जो भी अनहाइजीनिक बोल सकते हैं या फिर आर्टिफिशियल एडिटिव वगैरह जो भी है उसको यूज़ करते हैं, तो ये हमारा शरीर में कैंसर कभी ना कभी बनता ही है। तो ये सारी चीज़ें जो है बड़ों में बहुत ज़्यादा खतरा लिए हुए।
0: अच्छा, एक बात और हमारे जहन में आ रहा है क्योंकि ये मेरे हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब माँ अगर एनीमिक है और वो गर्भवती है तो क्या उसके होने वाले बच्चे पर इसका असर पड़ता है?
1: बिल्कुल असर पड़ता है, लेकिन सबसे पहले तो अगर माँ स्वस्थ नहीं रहेगी तो स्वस्थ बच्चे को जन्म देना तो असंभव है। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसका आउटकम के उससे पहले तो हम माँ की चिंता करना चाहेंगे, क्योंकि अगर माँ का हीमोग्लोबिन, और ये आम बात है, अगर महिला में आप जांच करिएगा या फिर स्तर देखा जाए तो 11 ग्राम से अगर नीचे खून है तो हम लोग एनीमिया बोलते हैं, और जबकि एक आम महिला जो है वो एवरेज जो है ना 10 से ऊपर बहुत कम लोग का मिलता है। तो इस सेंस में अगर बोला जाए तो उनको तो अपने लिए तो नॉर्मल रूटीन की तरह जो है ना रहना मुश्किल होता है, तो एक बच्चे को पेट में पालना, बेचारा बच्चा जब तक अपना माँ से अवशोषण कर लेता है, आयरन की मात्रा जितना रिक्वायर्ड हो कर लेता है, लेकिन एक समय के बाद लिमिट के बाद जो है ना दोनों का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो सकता, जिसके चलते बच्चा भी कुपोषित होने लगेगा या फिर उसका जितना वजन के साथ डिलीवरी होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा।
0: तो यह जो है बच्चों की जान खतरे में पड़ सकती है एनीमिया। सचमुच श्रोताओं, अगर हम देखें कि अगर हम होने से पहले अगर हम देखें तो अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो हम बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं, या अगर दे भी देते हैं तो उस बच्चे के जान को खतरा होता है। ऐसे में क्यों ना हम पहले से ही पौष्टिक आहार लें जिससे हमारा बच्चा भी स्वस्थ हो। चलते चलते हमारे श्रोताओं को क्या जानकारी देना चाहिए?
1: श्रोताओं के लिए मैं यही जानकारी देना चाहूँगा कि एक स्वस्थ शरीर रहेगा तो स्वस्थ मन रहेगा। और जैसे हम लोग अभी एनीमिया की बात कर रहे हैं तो एनीमिया के सेंस में बात करना चाहेंगे तब आपको बहुत माइन्यूट लेवल पे बात एक बताना चाहेंगे, बहुत

0: सूक्ष्म लेवल पर कि अगर शरीर में खून की कमी रहेगी तो हमारे शरीर में जो खून है उसमें भी हम लोग लाल रक्त कण बोलते हैं, तो वो हमारे शरीर में ऑक्सीजन को जो है फेफड़ा से कोशिका तक ले जाने का काम करता है। अगर शरीर में खून नहीं होगा या फिर उसका लेवल कम होगा तो ये कोशिका को जिस रूप में एक्टिविटी या काम करना होता है तो उस रूप में वो काम नहीं कर पाएगा। तो काम करने वाले को या पढ़ने वाले को उस स्तर का जो उसको जो है प्रतिभा या परफॉर्मेंस होना चाहिए, काम के प्रति उसका जितना आउटपुट आना चाहिए वो नहीं आएगा। दूसरा है कि जैसे मान लिया खून की कमी है तो कभी कभी आप देखते होंगे कि मुंह में छाले आने लगते हैं, घाव आने लगते हैं, तो ये सारा चीज़ के चलते धीरे धीरे करके आपको इन्फेक्शन का प्रकोप या उसका ये जो रफ्तार या शरीर में ये बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग WBC की बात करते हैं, तो ये हमारे शरीर में डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है। तो अगर ये शरीर में खून की कमी होगी तो हमारे शरीर में संक्रमण जो है ये बढ़ जाएगा, शरीर को जो है अपने आप को रोकना मुश्किल हो जाएगा। जब तक जो है ना अवसरवादी जो तत्व है या एक तरह से हम लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो है ये बढ़ने लगेगा। उसी तरह से जैसे अभी डेंगू की बात करें तो डेंगू अगर किसी को हो जाता है, जैसे अभी ये सिचुएशन अभी ये जो दौर है ये अभी बारिश का मौसम है तो मच्छर ज़्यादा पनपते हैं, तो इसमें अगर किसी को खुदा ना खास्ता डेंगू हो जाता है तो ये प्लेटलेट्स को कम करेगा। प्लेटलेट्स जहाँ कम होता है तो उसमें जो है शरीर में धब्बा धब्बा दिखाई देने लगता है, चकता आने लगता है, तो ये एक लिमिट के बाद तो शरीर उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो ये सभी के लिए दिक्कत हो सकता है या स्पेशली डेंगू मरीज की बात करें तो उनको तो दिक्कत होगा। और अल्टीमेटली जो है अगर समय रहते एनीमिया को टैकल नहीं किया जाएगा या उसको ध्यान नहीं देंगे तो एनीमिया के चलते अल्टीमेटली जान जाने का खतरा बना रहता है।
1: अंत में हमारे श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: श्रोताओं के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप सबसे पहले तो अपने आसपास जो है अपने घर में हरी साग सब्जियां लगाने का प्रयास करिए। हमारा जो कार्यक्रम करता है हम लोग सब 6 महीने पे डिवॉर्मिंग प्रोग्राम जो चलाते हैं उसको आप अपने में लागू करिए, अपने पड़ोसी को प्रेरित करके उनको कराइए। पेट अगर साफ रहेगा तो हम जो खाएंगे उसका एब्जॉर्प्शन सही होगा और हमारा आयरन या फॉलिक एसिड या बी12 जो कह रहे हैं वो शरीर को जाएगा और अपना प्रॉपर तरीके से काम करेगा। और हमारा जैसा अभी एनीमिया मुक्त भारत के तहत हमारा जो स्कूल प्रोग्राम चलता है तो इसको अगर सुचारू रूप से हम लोग सभी के लिए लागू कर पाए, हमारे शिक्षक या हमारी जो सेविका दीदी लोग हैं इसको अपना प्रोग्राम अपना समझ करके करेंगी और लेने वाले भी जो हमारे जो बेनिफिशरीज हैं वो भी इसको बढ़ चढ़ के करेंगे तो एक बीमारी को या एनीमिया को जो है जो कि एक लक्षण है ये आने से हम लोग रोक सकते हैं और अपना अपना काम हम लोग बहुत खुशी तरीके से कर सकेंगे।
1: तो आपने हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
1: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1-4-99 या 1-800-345-4060 पर।
0: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन, बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: बड़ी बहू,
3: ये तुम्हारे ना।
2: इतनी भी क्या जल्दी थी?
3: अरे और छोटी, ये तुम्हारे ना।
2: और ये
4: मेरी बुढ़िया के नाम।
5: पर दादी, आपके नाम?
6: सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
3: शुभ शुभ बोलो।
5: क्या?
6: आरबीआई कहता है।
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: तो इसी के साथ ही हमारा आज का आपका स्वास्थ्य कार्यक्रम समाप्त होता है। अगले बार कुछ विशेष जानकारियों के साथ हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी रमेश दास को विदा दें। नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, ये आज अब हम आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल। कृपया प्रतीक्षा करें।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत ताराबाद, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूं। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूं। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को खुश और चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूं। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना फसल बीमा जरूर कराएं।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: वेक्टर जनित रोग, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और जापानीज इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए मच्छरों से अपना बचाव करें। अपने घर के आसपास सफाई रखें, जल जमाव न होने दें, पानी के बर्तनों को ढक कर रखें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहने और हमेशा मच्छरदानी के अंदर सोएं।
6: बुखार होने पर ओझागुनी के पास ना जाएं, अपने गांव की सहिया को बताएं या नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, मुफ्त जांच और उपचार कराएं।
5: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
7: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कराती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, DBT सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
8: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।

0: यूपीआई ने बनाया है गांव और कस्बों में पेमेंट को आसान। करीब 60% यूपीआई पेमेंट हो रहे हैं 500 रुपए से नीचे, और हर दो में से एक ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रहा भारत में।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र।
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आराधना कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। माध्यमिक आचार्य भर्ती परीक्षा पर झारखंड उच्च न्यायालय सख्त, मुख्य सचिव को प्राथमिकी दर्ज कराने और सीआईडी को जांच सौंपने का निर्देश। राज्य में स्वाइन फ्लू को लेकर अलर्ट जारी, अस्पतालों में मरीजों के इलाज के लिए आइसोलेशन वार्ड चिन्हित करने का निर्देश। राज्य के कई इलाकों में 31 अगस्त तक गरज के साथ भारी बारिश होने की संभावना, वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी। और राष्ट्रीय खेल दिवस पर राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन, रांची में इंटर स्टेट पारा फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन, हजारीबाग में 3 दिवसीय प्रमंडलीय खेल की शुरुआत। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 137वां एपिसोड होगा। मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR तथा दूरदर्शन न्यूज की वेबसाइट पर किया जाएगा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज ICAR से संबद्ध भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक डॉ. सुजय रक्षित ने रांची स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान रांची सहित राज्य भर में कृषि अनुसंधान, फसलों की गुणवत्ता में सुधार सहित कृषि से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि अन्नदाताओं को सहयोग और प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है और इसमें संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना क्षेत्र के केंजरा टोला में भूमि विवाद में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई। तीनों शवों का आज जमशेदपुर स्थित MGM अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा अस्पताल पहुंचकर पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में श्री मुंडा ने घटना की निंदा करते हुए राज्य सरकार को कठघरे में खड़ा किया।
1: शासन को ऐसे मामले पर जो जिस टोंटो में जैसे जमीन के बारे में कहा गया, तो लोगों ने स्टेटमेंट दिया कि जमीन के लिए अब रेवेन्यू मिनिस्टर वहां के हैं, तो उनको उनका क्षेत्र है, उनको खुद देखना चाहिए।
0: माध्यमिक आचार्य नियुक्ति मामले में दोबारा परीक्षा के लिए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सुनवाई के बाद मामले में मुख्य सचिव को प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है। साथ ही अदालत ने मामले की जांच सीआईडी को सौंपने और समय सीमा में जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की वार्षिक आम चुनाव की प्रक्रिया आगामी 31 अगस्त से शुरू हो रही है। इसके तहत 12 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। चैम्बर के चुनाव को देखते हुए अलग अलग गुटों में और व्यापारियों में चुनाव सरगर्मी बढ़ रही है। चैम्बर चुनाव में हिस्सा ले रहे तुलसी गुट के प्रमुख तुलसी पटेल ने आज रांची में प्रेस वार्ता में अपनी भावी रणनीति का जिक्र किया।
2: व्यापारी एकदम खुले दिल से रात भर दिन बंद क्या 2400 घंटा आवागमन निर्भय रूप से करे, इस तरह का हमारा प्रयास रहेगा। और जब कानून व्यवस्था के चलते कुछ बड़ी इंडस्ट्री नहीं आती है तो हमारा प्रयास है पहले कानून व्यवस्था सुधरे।
0: देश के कई राज्यों में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। केंद्र सरकार के जारी निर्देश के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने राज्य के सभी सिविल सर्जनों को अलर्ट रहने और संक्रमण से निपटने के लिए अस्पतालों में कम से कम 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड चिन्हित करने का निर्देश दिया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राजधानी रांची में कल विभिन्न आदिवासी संगठनों की ओर से रैली का आयोजन किया गया है। गुमला जिला भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष छोटेलाल उरांव ने आज प्रेस वार्ता में कहा कि परिसीमन होना एक संवैधानिक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में आदिवासी समाज का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि परिसीमन को लेकर कुछ संगठनों द्वारा आदिवासी समाज में यह भ्रम फैलाया जा रहा है।
3: हमारा सीट घटे या बढ़े ये परिसीमन तय करेगा कि हमारा सीट बढ़ेगा या घटेगा। ये पहले से ये फैसला कर ले रहे हैं कि हमारा सीट घट रहा है, ये औपचारिक बात नहीं है। औपचारिक बात ना होने के कारण हमारे आदिवासी समाज क्षुब्ध हैं।
0: इधर आदिवासी छात्र संघ ने जनगणना में सरना धर्म कोड का विकल्प नहीं होने पर परिसीमन और जनगणना दोनों का बहिष्कार करने की घोषणा की है। संघ के केंद्रीय संयोजक डॉक्टर सुशील कुमार मिंज ने आज रांची में प्रेस वार्ता में कांग्रेस पर वर्ष 1961 में आदिवासी धर्म कोड को षड्यंत्र के तहत हटाने का आरोप लगाया
4: कि सरना नहीं तो जनगणना नहीं। अगर 2027 में जो जनगणना होगी उसमें हम विरोध करेंगे। अगर हमारा कॉलम नहीं रहेगा तो हम जनगणना को बैकआउट करेंगे। और दूसरी बात है कि हमारा परिसीमन आदिवासी छात्र संघ का ही आवाज है।
0: गिरिडीह पुलिस की पहल आपका मोबाइल फिर से आपका के तहत आज जिले भर के 112 लोगों को उनके खोए हुए मोबाइल फोन वापस सौंपे गए। इस दौरान मोबाइल धारकों ने गिरिडीह पुलिस के प्रति आभार जताया है। इस मौके पर जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि अब तक सैकड़ों लोगों को उनके मोबाइल लौटाए जा चुके हैं, जिससे लोगों के चेहरे पर मुस्कान वापस आई है।
5: इस वर्ष हम लोगों ने 424 मोबाइल इस वर्ष का हम लोगों ने लोगों तक वापस कर चुका है अभी तक। और इसके पहले 2025 में कुल मिला के हम लोग जब से ये हमारा चल रहा है ये आपका मोबाइल फिर से आपका कार्यक्रम, इसमें करीब 850 से ज्यादा लोगों को मोबाइल उनके हाथ तक पहुंचा है।
0: राज्य के कई इलाकों में आगामी 31 अगस्त तक गरज के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि आज कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, पूर्वी तथा पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले में कहीं कहीं पर भारी बारिश हो सकती है। कल दुमका, देवघर, जामताड़ा, गिरिडीह, खूंटी, रांची, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, बोकारो और धनबाद में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं। वहीं 31 अगस्त को गुमला, रांची, खूंटी, लोहरदगा और लातेहार जिले में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान आंधी और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की गई है। राष्ट्रीय खेल दिवस पर आज राजधानी रांची समेत राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर रांची के गांधीनगर में इंटर स्टेट पारा फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान पारा फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मुकेश कंचन ने कहा कि इस खेल में पहली बार वैसे दिव्यांग खिलाड़ी शामिल हुए हैं जो दिव्यांग के साथ साथ मानसिक रूप से भी कमजोर हैं।
6: ये प्रतियोगिता जो आज कराई जा रही है राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर फुटबॉल, और ये फुटबॉल जो कैटेगरी आप देखेंगे इसमें अस्थिबाधित भी है, डिफ एंडम जो बोल सुन नहीं सकते हैं, और इस बार हम लोगों ने पहली बार इसमें शामिल किया है ऐसे दिव्यांगजनों को जिसे हम स्पेशल चाइल्ड कहते हैं, ऐसे बच्चे भी यहाँ पर खेल रहे हैं।
0: राष्ट्रीय खेल दिवस पर हजारीबाग में 3 दिवसीय प्रमंडलीय खेल महोत्सव का आज से शुरू हो गया है। महोत्सव का उद्घाटन सांसद मनीष जायसवाल, विधायक प्रदीप प्रसाद, अमित यादव और उपायुक्त हेमंत सती ने संयुक्त रूप से किया है। इसमें हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, गिरिडीह, रामगढ़, बोकारो और धनबाद के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। माध्यमिक आचार्य भर्ती परीक्षा पर झारखंड उच्च न्यायालय सख्त, मुख्य सचिव को प्राथमिकी दर्ज कराने और सीआईडी को जांच सौंपने का निर्देश। राज्य में स्वाइन फ्लू को लेकर अलर्ट जारी, अस्पतालों में मरीजों के इलाज के लिए आइसोलेशन वार्ड चिन्हित करने का निर्देश। राज्य के कई इलाकों में 31 अगस्त तक गरज के साथ भारी बारिश होने की संभावना, वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी और राष्ट्रीय खेल दिवस पर राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। रांची में इंटर स्टेट पारा फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन, हजारीबाग में 3 दिवसीय प्रमंडलीय खेल की शुरुआत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: इस अंक में आप सुनेंगे देवघर जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे देवघर संवाददाता।
1: बाबा बैद्यनाथ धाम में सावन का महामेला शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है। इसके साथ ही जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली है। सावन खत्म होते ही बाबा नगरी में भादो मेले की शुरुआत हो गई है। प्रतिपदा के दिन ही मंदिर में भक्तों की लंबी कतार देखने को मिली। सुबह से ही जलार्पण के लिए श्रद्धालुओं की लाइन में लगे हैं। सदर SDO रवि कुमार ने बताया कि सावन की तरह ही भादो मेले में भी व्यवस्था रहेगी। भीड़ नियंत्रण, पेयजल, स्वास्थ्य और साफ सफाई की वही व्यवस्था जारी रहेगी और दंडाधिकारी सुगमता से श्रद्धालुओं को जलाभिषेक कराएंगे।
2: माधव मेले में सिस्टम चेंज हो रहा है, मतलब अभी तो स्पर्श दर्शन चालू हो गया, लेकिन हम लोग पुरोहितों के साथ वार्ता में भी कि हम लोग अर्घा वगैरह का सिस्टम जो है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा होती है, धक्काओं की बहुत भीड़ होती है, तो लिमिटेड डेज में ही जब बहुत ज्यादा भीड़ होती है तो हम लोग अर्घा का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में जैसा कि सर ने बताया था कि हम लोग बाहरी अर्घा का भी परमानेंट कैसे चला सकते हैं, स्पर्श दर्शन भी चल रहा है तो बाहरी अर्घा कैसे चला सकते हैं उसके बारे में प्रयास करना, कुछ बनवाना पड़ेगा बाहरी अर्घा, मेटल वगैरह में इंजीनियरिंग का थोड़ा सा वर्क। उसके अलावा जो मंदिर की टीम पहले मजिस्ट्रेट एंड पुलिस फोर्स जो परमानेंटली पोस्टेड और होमगार्ड्स पोस्टेड है वो वापस से एक्टिवेट हो जाएंगे।
1: वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से भी सावन मेले में जवानों के बेहतर और तरीके से काम किए जाने पर राहत की सांस ली है। प्रवीण पुष्कर ने बताया भादो मेले में भी इसी तरह की मुस्तैदी होगी और पूरा ट्रैफिक व्यवस्था भी और बेहतर किए जाएंगे।
2: एक सुगम तरीके से सभी श्रद्धालुओं का जलार्पण हुआ और इस सावन के बाद हम ये सौभाग्य भी मानते हैं हमारा और पूरी टीम का और जितने भी पुलिसकर्मी जो इस ड्यूटी में थे कि उनको मौका मिला कि बाबा की सेवा में वो एक अपना योगदान दे सके। तो तैयारियां चल रही है, उसकी प्लानिंग चल रही है और कल से भादो भी स्टार्ट हो जाए तो क्राउड कंट्रोल और विधि व्यवस्था को मेंटेन करना ये हमारी सब प्रथम जिम्मेदारी है।
1: नगर निगम भी अपने बेहतर काम के लिए लगा हुआ है। नगर आयुक्त सुलोचना मीना ने कहा कि नगर वासियों को और बेहतर सुविधा मिलेगी और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा लेकर जाएं, यह मेरी व्यवस्था है।
3: भादो मेला शुरू हो रहा है, श्रावण माह में चैलेंजिंग था, काफी भीड़ थी और पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाई जा रही थी, लेकिन शॉप वालों ने, श्रद्धालुओं ने, पब्लिक ने, लोकल्स ने, पंडितों के द्वारा, सभी के द्वारा काफी सपोर्ट मिला है और मुझे लगता है इसीलिए नगर निगम काफी इफेक्टिवली अपना काम कर पाया है। और भादो मेला में भी सेम ही स्ट्रैटेजी रहेगी, जैसे कि पहले सुपरवाइजर्स थे, सुपर जोनल थे, जोनल्स थे, जो कि हर एरिया को, एक छोटी छोटी गली को भी देख रहे थे, तो इस बार भी भादो मेला में भी वही रखा जाएगा, क्योंकि अब पेरीमीटर बहुत कम हो गया है, मंदिर क्षेत्र के आसपास है, तो और इफेक्टिवली काम करने की कोशिश की जाएगी। परंतु जैसे हम सभी को पता है कि मंदिर के आसपास काफी छोटी छोटी गलियां हैं और संडे मंडे को वहां पे कोई गाड़ी भेजना भी जो कूड़ा उठाने के लिए काफी मुश्किल हो जाता है, तो इस बार वापस से ठेला गाड़ी का प्रयोग किया जाएगा और जितना हो सकेगा उतना काम किया जाएगा। पानी की सप्लाई इस बार अनइंटरप्टेड रही, पूरे महीने में पानी की सप्लाई काफी अच्छी रही। उसके अलावा बाकी जितने भी चापनल या लाइट से संबंधित जितनी भी समस्याएं थी सबका निष्पादन 24 घंटे में किया गया।
1: सावन ने दिखाया आस्था का सैलाब, अब भादों में भी गूंजेगा बोलबम और जय बाबा बैद्यनाथ का जयघोष। श्रद्धालुओं के साथ पर्यटनों का आना लगातार देवघर में जारी है। इसके साथ ही व्यवस्था में भी लगे सभी लोग ने कहा कि यहां से बेहतर व्यवस्था लेकर लोग जाएं, यही हमारी कामना है। आशीष कुमार अम्बस, आकाशवाणी समाचार, देवघर।
0: अभी आप सुन रहे थे देवघर जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

आप सुन रहे थे जिले में आजकल आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, समय है कार्यक्रम आपकी पसंद का। आपकी पसंद कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूं अवनीश कुमार सिन्हा। पहली पसंद आप सबों की। दुर्गाई सेलू जिला परभनी से चंदू कुलकर्णी, हेमलता सी आर कुलकर्णी, महालीसाई से बिरबल महाली, सरस्वती महाली, प्रेमचंद महाली, फूलमणि महाली, शकुंतला महाली, सुमांति महाली, यशोदा महाली, शांति महाली, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश, मोहल्डिया सोनमा से नंदकिशोर महतो, राधामणि महतो, रविवारी बंदनी, दीपक संतोष, राहुल बिट्टू, आयुष गीतेश, अन्नू तन्नू, डिस्को महतो और भाई नंदू महतो, मेन रोड सोनुआ से गुरुचरण नायक, अंशुयस नायक, प्रियंका नायक, देवाशीष नायक, गुलशन नायक, पिनाक पानी प्रधान, तनुश्री प्रधान, नील पानी प्रधान, नीक पानी प्रधान। इसी गीत को सुनना चाहे छोटा नीमरी चाईबासा से बाबूराम, शांति देवी, रोहन, कोमल, ऋतिक, लुधियाना पंजाब से अमरजीत, सोनम कौर, परमजीत, आदिबा कौर, बिहारी कॉलोनी महासमुंद से वलीउल्ला फकीर, डब्लूउल्ला फकीर, परवीन आशमा फकीर, बुलंदशहर से बद्रुबली अंसारी, फर्जीबली अंसारी, फर्जीबली अंसारी, चांडिल ग्राम हारूडी से तुलसीदास महतो, कल्पना महतो, मनोरमा महतो, मनमहिनी महतो, दीनबंधु, बड़ा बाम्बो सुपाईसाई से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, कुमारी निशा तांती, प्रकाश तांती, ललित प्रधान, उग्रसेन प्रधान, श्यामदेव नायक, पूजा सीमा नायक, सुदर्शन प्रामाणिक, ममता नमिता सुशीला, ग्राम गेलिया लोहर से कोमल बेसरा, बसंती रमेश, अन्नू बनवाली, सिद्धू कुमारी और पूजा। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म कुदरत का ये नगमा। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर की।

अगली पसंद आप सबों की। बड़ा बड़ी बाजार चाईबासा से मोअज्जम बिहारी, समीमा खानम, निम्मी, बिट्टू, किरण, रोशनी, मुस्कान, परी और नबीहा। बड़ी बाजार चाईबासा से भगीरथ महतो एवं इनके परिवार के सभी सदस्य, गांव कीता सरायकला से राधा कृष्ण गोप, सुनीता गोप, उमा गोप, गीता गोप, रीता गोप, सरस्वती गोप, आराध्या गोप, अमित गोप, सुमित गोप, अंकित गोप, अभिषेक गोप, विनोद गोप, आशीष गोप, विकी गोप, राजू गोप, राजन गोप, माहिर गोप, शुभम गोप। धमतरी छत्तीसगढ़ से संतोष कुमार धुरवंशी, सरोज धुरवंशी, मास्टर शानू धुरवंशी। खमहरिया बिलासपुर से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार। चांदपुर पोटका से संतोष कुमार भगत, बासंती भगत, मीनाल कांति भगत, चांदनी भगत, मास्टर आयुष भगत, राजकुमार भगत। कॉलेज रोड घाट शिला से सोना, रूपा, मोनिका, शिवम, मौसमी, संतोष, आनंद। कोटावा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय। सिरपुरा कला गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय, नवनीत राय। भाटपारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, विष्णु साहू, अंकिता, अमृता जोशी, लोकेश जोशी। गांव हडेरा से मानता राम सिंह कुंटिया। ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर, गुड़िया ठाकुर। बाबा कुटी ओपरा पाठन से प्रेमू साहू, यमुना साहू। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म अनमोल मोती का ये नगमा, आवाज़ें महेंद्र कपूर की है।

कार्यक्रम के अंत में आई सुनते हैं आप सबों की पसंद पे अगला गीत। करसवा पतिसाई से सुकरा नायक, मंजू नायक, जलेश्वर नायक, गौरव नायक, सोनवा गांव पोड़ाहट से मिथुन नायक, राकेश नायक, मुकेश नायक, मकरू आचार्य, वसुंधरा कॉलोनी से इंटोला चाईबासा से भोला राम मधुर, अंबर कुमार मधुर, विशाल कुमार मधुर, प्रशांत कुमार मधुर, नीला मधुर, करुणा मधुर, रिकी मधुर, अनिष्का मधुर, आस्था मधुर, श्रेष्ठा मधुर और सनी मधुर, बड़ा नीमडी चाईबासा से तुलसी पथिक, मीरा देवी, बजरंगी ठाकुर, मितु रंजन, राजीव रंजन, मौलिक रंजन, अमृत कुमार, अमित कुमार, सुमित कुमार, न्यू कॉलोनी नीमडी से ठाकुर प्रसाद रंगीला, निर्मला देवी, अर्चना राम, खुशबू खुशी, अभिषेक, अंश, अनीस और मुन्ना। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म भीगी पलके का ये नगमा। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की।

इस गीत के साथ ही श्रोता हमारा आज का आपकी पसंद कार्यक्रम अभी ही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर, और आइए सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: ᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱡᱚᱠᱨᱚᱢ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢᱮᱜᱼᱟ ᱠᱨᱤᱥᱤ ᱮᱵᱚᱢ ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱠᱟᱞᱭᱟᱱ ᱢᱚᱱᱛᱨᱟᱞᱚᱭ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱵᱚᱭᱦᱟᱢᱤᱥᱤ ᱠᱚ ᱡᱟᱣ ᱞᱮᱠᱟᱜᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱦᱚᱞᱤᱧ ᱦᱮᱡ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱡᱟᱱᱠᱟᱨᱤ ᱠᱚ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱫᱤᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 29 ᱟᱜᱚᱥᱴ ᱟᱨ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱟᱥᱴᱨᱤᱭᱚ ᱠᱷᱮᱞ ᱫᱤᱵᱚᱥ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣᱮᱜᱼᱟ
1: ᱵᱤᱞᱠᱩᱞ ᱥᱩᱱᱤᱛᱟ ᱡᱤ आज राष्ट्रीय खेल दिवस है और हम हमारे सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। सुनीता जी, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। यह दिन 1928, 1932 और 1936 में भारत के लिए ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद सिंह के जन्मदिन का प्रतीक है। उन्होंने अपने करियर में 400 से अधिक गोल किए। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी क्षेत्र पर उन्होंने अपनी मुहर लगाई। वे भारतीय और विश्व हॉकी में एक महान हस्ती हैं। उनके लिए सबसे प्रसिद्ध स्मारक मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है, जो भारत में खेलों में जीवन भर की उपलब्धि के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उन्होंने हॉकी खेल में भारत का नाम ऊंचा किया और उनके जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुनीता जी, खेल से शारीरिक मानसिक विकास होता है और बौद्धिक विकास होता है। आज वर्तमान समय में खेल की अपनी अलग पहचान है। इसमें हमारे सभी युवा वर्ग के इसमें शामिल हो रहे हैं।
0: सारी कथा के आसमनी जी जहाँ कभी रोड़ाट को अबोई चासी बुहा को कि तेहेन जहाँ अबोई मेजर ध्यान चंद उनकी ना जन्मदिन उपलक्ष रे नवा खेल दिवस को मनावे आ और जहाँ लेका बिन मेन किया कि हॉकी रिन जादूगर को मिताया आज गे चल गे से आज हॉकी रे नुना बेसे खेल ले आ उन बेसे एड़े ले आ कि मैंने जितने होड़ उनिया आ न्यूतम ते तेहेन्या दिवस को मनावे आ और अब जितने होड़ गए बन बढ़ाया कि अब वा जीवन रे खेल तीना महत्व दोहे आ चल गे से जुदि बन खेल बढ़ाया गिद्र खोज को बन खेल आ तो अब हड़मो को हम बेस गे तहना तो तेहेन नुआ राष्ट्रीय खेल दिवस रे अब जिते जहाँ तीना खिलाड़ी बोया को मिना को उनको अड़ी शुभकामना लिंग इमा को करना तो नुआ चर्चा साउते गे तेहेन्या आरो मिट्टंग चर्चा लिंग चर्चा अब चल गे से नितो जहाँ लेका हुड़ू बाबा को बन चा सका आर उनारे चा साउते गे उनारे चेलेका अब हुड़ू को बेसते बढ़ाओ आ बेसते मारांग आ उना इदी कते अब हेड़े को हम बन हेड़े जिया गछियो या बन हेड़े जिया बन कढ़ाने आ बन तो उना कमी को जुदी बन कमी आ इनखान अब आ हुड़ू बाबा को बेस्ते दारे आ आर जुदी हुड़ू को रे अब आ घास को तहेना बाबन हेड़े दा इनखान उना दारे हो बेस्ते बाय सागेनो आ आर बेस्ते हो बाय लहा आ तो जहाँ अब बन उना कमी को बन कमी आ नितो दो आर जहाते नहीं अब चासी बोहा को मिना को उना कमी को अडी कुरुमुटु ते को कमी आ
1: सुनीता जी, धान फसल में खरपतवार का नियंत्रण बहुत ही जरूरी है। धान फसल में खरपतवारों का नियंत्रण बहुत जरूरी है। सुनीता जी, अगर खरपतवार उग आते हैं तो ऐसे में जो पौधों का विकास है वो सही तरह से नहीं हो पाता है। इन दिनों हम देख रहे हैं हमारे सभी किसान भाई बहन रोपाई का कार्य भी कर रहे हैं, इसके साथ साथ खरपतवारों का नियंत्रण भी कर रहे हैं। धान फसल में मुख्य रूप से जो खरपतवार उगाते हैं उनमें से घास कुल, मोथा कुल, चौड़ी पत्ती वाले पाए जाते हैं। इसके साथ ही जंगली धान एवं सवा के पौधों में पुष्पावस्था के पहले काफी समानता पाई जाती है, तो इन सब का नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। और इसके साथ ही खरपतवार से बचाव के लिए हमारे किसान भाई बहन खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए हाथ से या खुरपी की सहायता से निकाल सकते हैं। अगर लाइनों में सीधी बुआई की है तो फसलों में पैडी वीडर चलाकर भी खरपतवारों को रोका जा सकता है। इसके साथ ही सुनीता जी, हमारे किसान भाई बहन फसल चक्र अपनाए तो वो ज्यादा अच्छा है। धान फसल के बाद चना, मटर, गेहूं ये सब लगा सकते हैं।
0: सारी कथा गे जहाँ लेका अलिंग हुलिंग लयात पिया आर ने तो अब आसामनी जी हो उनका लयात बुना कि चेलिका कते अब मने अब हुड़ू बाबा को चासकन समय रे चेलिका अब नारे घास को चेलिका नारे खर पतवार को बन ओचो दाड़े है आ ओडोक दाड़े है आ तो बोहा मिसी को नुआ चर्चा बाद दिला मणांग सेट बोन लहा आ आर तेहिन बोन आंजोमा मनोरंजन लगी
1: आनंद लेते हैं। अब हम हो लोक गीत का बलभद्र आलडा व साथियों के स्वर में

0: सुनीता जी, अभी हम आनंद ले रहे थे होलू गीत का, बलभद्र आल्डा व साथियों के स्वर में। आइए अब हम सुनते हैं यह संदेश।
1: जलवायु परिवर्तन क्या है? यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु हमेशा प्राकृतिक रूप से बदलती रही हैं, जिसमें अत्यधिक ठंड और गर्म अवधियां शामिल हैं। वैज्ञानिक बर्फ के परतों, पेड़ों के तनों पर बने छल्लों और अनेक प्रकार के कोरल को देखकर इन परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। लेकिन आज मानवीय गतिविधियां जैसे तेल, गैस और कोयला जलाना और जंगलों को काटना जलवायु परिवर्तन को तेजी से बढ़ा रही है। इससे मौसम में और भी ज्यादा उतार चढ़ाव, पौधों और जानवरों की हानि तथा पानी, भोजन और ऊर्जा की समस्याएं पैदा होती हैं। जलवायु परिवर्तन का मतलब है तापमान और मौसम के तरीकों में लंबे समय तक होने वाला बदलाव। यह एक रोचक तथ्य है। औद्योगिक युग से अब तक पृथ्वी का औसत तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ चुका है।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी

0: नेतृत्व में पिछले 8 सालों में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों को आधुनिक बनाने और किसानों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। साल 2013-14 में जहां कृषि बजट केवल 21,933 करोड़ रुपए था, वहीं साल 2022-23 में इसे बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ कर दिया गया। तभी तो साल 2013-14 में जहां खाद्यान्न उत्पादन 265.05 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 के तीसरे अग्रिम अनुमान में ये बढ़कर रिकॉर्ड 314.51 मिलियन टन हो गया। वहीं साल 2013-14 में बागवानी फसलों का उत्पादन जहां 280 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 में ये बढ़कर 333.25 मिलियन टन हो गया। किसानों की कृषि संबंधी जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई।
1: प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि आती है ना, वो डायरेक्ट खाते में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवधान नहीं। और फिर उसको निकाल के हम बाजरा को बीज ले आते हैं, गेहूं को बीज ले आते हैं, सरसों को बीज ले आते हैं। बातें हमारे खेल चल तो बढ़िया।
0: अब तक 11.37 करोड़ से भी ज्यादा पात्र किसानों को 2,00,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई।
2: हमने 1,800 रुपए प्रीमियम भरा था, अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी। उसका हमने इंश्योरेंस कंपनी को उनको सूचना दी और उनके प्रतिनिधि आके हमारे खेतों का निरीक्षण किया उन्होंने, और उसके बाद में फिर हमारा बीमा 2022 में 76,000 रुपए मुझे प्राप्त हुआ।
0: अब तक 10.69 करोड़ से ज्यादा आवेदक किसानों को 1,18,195 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भुगतान किया गया है। साल 2014 के मुकाबले अब किसानों को दलहन, तिलहन और धान की उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है। इस बढ़े हुए एमएसपी दर पर साल 2020-21 में 991,00,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं व धान की खरीद हुई। 2,44,159 करोड़ रुपए मूल्य की गेहूं व धान की फसलों की रिकॉर्ड खरीदी हुई, जिससे 1.75 करोड़ से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1,00,000 करोड़ रुपए की मदद से कृषि और इससे संबंधित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है।
3: AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मिल चल रही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मिलें हैं, और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गांव में खुशहाली आ रही है।
0: 313.58 लाख से भी ज्यादा नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। मिट्टी में पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग करने के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किए जा चुके हैं। किसान की आय में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा दिया गया।
4: ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना ये बहुत ही जरूरी, जो सरकार का उपक्रम है। प्रदूषण फैलता है, उससे भी उसको राहत मिलती है, और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है।
0: खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु, सूक्ष्म सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल योजना क्रियान्वित की जा रही है। 10,000 से ज्यादा नए FPO का गठन और उसका संवर्धन किया जा रहा है।
5: मैं FPO का डायरेक्टर हूँ। मेरा FPO पूरा हो गया है। 3,02,000 रुपया किसान का है शेयर होल्डर, और 3,02,000 रुपया सरकार दी है, उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया।
0: किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को आपस में ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि आवंटित की गई है। संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए किसान रेल चलाई जा रही है। बहुत शीघ्र खराब होने वाले फल, सब्जियों एवं अन्य बागवानी उत्पादों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए किसान रेल का संचालन होने से किसानों को लाभ हो रहा है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है।
6: हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही हैं, लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है।
0: कृषि में रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 8 साल शानदार प्रदर्शन से उपलब्धियां बेमिसाल।
7: कार्यक्रम किसानवाड़ी में आप सबका पुनः स्वागत है। किसान भाई बहनों, अब हम भेंटवार्ता के माध्यम से जानकारी लेते हैं प्राकृतिक तरीके से खाद तैयार करने की विधि। इस विषय में जानकारी दे रही है हीरामणि पारिया और उनसे बातचीत कर रही है सुनीता हांसदा।
8: आज हमारे साथ है हमारे एक किसान मित्र, आइए उनसे जानते हैं उनका परिचय और जानेंगे कि किसान जो हमारे महिला मित्र है वो खेती करती हैं, बाड़ी खेती बाड़ी करती हैं, तो किन किन साग सब्जियों की खेती बाड़ी करती है उस विषय पर। तो सबसे पहले आइए जानते हैं उनका परिचय।
9: मेरा नाम है हीरामणि फड़िया, गांव पहाड़पुर है और मेरा समूह का नाम है पुनर्विमर्शन, उसमें मैं अध्यक्ष भी हूँ और समूह से ही हमको चुना गया है कृषि मित्र, जो हम बागान सबका देख रेख करते हैं और खाद दवा सब भी बनाने का ट्रेनिंग लिए हैं और ट्रेनिंग भी देते हैं दीदी लोगों को।
8: बहुत अच्छी बात है हीरामणि जी, आपने परिचय अपना जो दिया है बहुत अच्छा दिया है कि आप महिला समिति से जुड़ी हैं, उनकी अध्यक्ष भी और कृषि मित्र भी है, जो कि सबसे हमारे लिए जो ज़रूरी है, कृषि जो हमारे जीविका का सबसे बड़ा साधन है। तो सबसे पहले आप हमें बताइए कि आपने किस किस साग सब्जियों की खेती अभी की है।
9: टमाटर, बैंगन, मिर्चा, साग सब्जी और मतलब और कुछ भी, साग धनिया जैसे जी सबको लगाए हैं और खाद सब तो अपने से बना के लगाते हैं
8: जी। तो सबसे पहले आप हमें बताइए कि मतलब किस तरह से आप खेतों की तैयारी करते हैं और किस तरह से जो है कोई भी फसल लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं।
9: हल जोतते हैं, फिर उसको हाथ से मिट्टी को नरम करते हैं, उसके बाद में हल्का गोबर वाला खाद मिला के उसको या बनाते हैं, तैयार करते हैं, फिर साग सब लगाते हैं
8: जी।
9: और जो बीज तो उसको उसके लिए अलग से बनाते हैं बीज लगाने वाला, और साग तो छिड़का देते हैं
8: जी। हाँ, तो बीज जब आप लगाते हैं किसी को, मतलब पौधा अगर रोपने के लिए लगाते हैं तो उसकी क्यारी कैसे बनाते हैं।
9: क्यारी लाइन में लगाते हैं, चार कोना करके
8: जी,
9: किनारे किनारे थोड़ा सा मिट्टी को ऊपर करते हैं ताकि पानी बहा के बाहर ना जाए, उसके अंदर में ही रहे
8: जी। तो लगाने के बाद कितने कितने दिनों के अंतराल में जैसे खाद वगैरह देना होता है, सिंचाई की कैसे व्यवस्था आप करते हैं।
9: सिंचाई की अभी तो तालाब से पानी लेते हैं तो उसका सिंचाई करते हैं वो से मोटर से
8: जी।
9: हाँ, मोटर से करते हैं और उसको ज़्यादा एक बार में ही ज़्यादा ज़्यादा करके डाल देते हैं तो दो तीन दिन तो छोड़ देते हैं, और उसके बाद में उसको या मिट्टी को भी थोड़ा सा
8: सूखने देते
9: हैं। सूखने देते हैं
8: जी।
9: हाँ,
8: खाद में किस तरह का खाद का इस्तेमाल आप करते हैं, रासायनिक खाद करते हैं कि जैविक खाद करते हैं।
9: रासायनिक तो नहीं करते हैं
8: जी।
9: हाँ, अपने से बनाते हैं गोबर खाद को।
8: अच्छा। हाँ, तो जैसे आपने कहा हीरा जी अपने से खाद बनाते हैं, तो हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि हमारे किसान भाई भी जाने कि अगर उनको भी जैविक खाद बनाना हो तो किस तरह से वो बनाते हैं, मतलब कैसे बना सकते हैं।
9: गोबर लेते हैं और गौमूत्र लेते हैं, गुड़ थोड़ा सा लेते हैं
8: जी,
9: और धीमा मिट्टी लेते हैं। अच्छा। उसको मिला के 20 लीटर पानी में
8: जी
9: मिला के उसको 3 दिन तक छोड़ देते हैं
8: जी,
9: या मैं ड्राम या तो बाल्टी वगैरह में, फिर ओला तैयार हो जाता है, फिर ओला 20 लीटर पानी में उसको 1.5 लीटर मिला के उसको या करते हैं, छिड़का देते हैं
8: फसलों में।
9: हाँ,
8: जो
9: फसलों में। हाँ, तो उसको खाद मतलब यह मिल जाएगा तो थोड़ा हरा भरा बन जाएगा
8: जी, जी। हीरा जी आपने कहा कि आप जो है कृषि मित्र है और आप ट्रेनिंग भी देती हैं, तो किस तरह का ट्रेनिंग देती हैं, कैसे मतलब
9: खाद बनाने का
8: जी,
9: और जो फल फूल में कीड़े सब लगते हैं जड़ते हैं फूल सब उसका बारे में
8: जी, तो थोड़ा सा विस्तार से हमें उस पर बताइए
9: उसका। जैसे अभी फूल सब जड़ जाता है तो उसका अलग से एक खाद है, जो उसका अंडा एक टू और 15 टू नींबू उसको निचोड़ के उसका अंडा को उसमें रखते हैं और 15 दिन उसको ढक्कन में रख के 15 दिन तक उसको छोड़ देते हैं
8: जी।

0: उसको 15 दिन में तैयार हो जाता है और उसका एक बूंद मिला के पानी में, 1 लीटर पानी में उसको मिला के छिड़का देते हैं तो फूल सब नहीं झड़ेगा
1: जी। मतलब जो पौधे के जो फूल सब,
0: हाँ, फूल सब होते हैं, फल देने से पहले फूल होता है ना, उस सब जड़ता है
1: जी।
0: हाँ, उसमें
1: जी। और किस तरह का जो है खाद, मैंने खली भी इस्तेमाल करते हैं क्या, नीम का खली या?
0: हाँ हाँ, वो सब भी और एक खाद है जो 5 पत्ती जी मिला के बनाते हैं हम लोग
1: जी। वो क्या खाद है?
0: ओ, जैविक खाद है
1: जी।
0: हाँ,
1: उसको कैसे बनाने का?
0: उसको जैसे पुष्ट पत्ता बोलते हैं, बैगना पत्ता, करंज पत्ता
1: जी,
0: वो सबको 1-1 किलो पीस के मिला देते हैं पानी में, उसको 15 दिन तक उसको रखते हैं, फिर बन के तैयार होता है और उसको चलनी करके वाला पानी से हम लोग पानी में मिला के छिड़का देते हैं
1: जी।
0: हाँ,
1: तो वो मतलब ऐसा जहर का काम तो नहीं होता है, मतलब इंसान के लिए तो कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता?
0: नहीं, नहीं,
1: केवल जो हमारे फसल में जो कीड़े सब लगे
0: हैं सब होते हैं सब
1: जी।
0: हाँ।
1: तो हीरा जी, ये तो बहुत अच्छा तरीका है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मुझे भी ऐसी खाद के बारे में नहीं पता था और रासायनिक दवाओं के बारे में भी नहीं पता था, तो ये ट्रेनिंग आपने कहीं से प्राप्त किया है?
0: हाँ, समूह से जुड़े हैं, फिर समूह में हमको बताया कि ट्रेनिंग लेना चाहोगे, तो हम बोले कि हाँ लेना चाहेंगे, तो फिर हमको यहाँ सरायकेला RCT उसमें लिए
1: जी,
0: 15 दिन का
1: जी। हाँ, तो बहुत फ़ायदा इससे हुआ होगा?
0: हाँ, अभी हम लोग उसी में करके करते हैं बागान का
1: जी,
0: कुछ अपना बाड़ी सब में लगाए हैं
1: जी,
0: खाद सब अपने से बना के उसमें मिला के, बाहर का अभी रासायनिक सब नहीं लेते हैं, अभी हम लोग सीख गए तो उसी से बना के
1: जी। और इसमें कीड़े वड़े नहीं लगते हैं?
0: नहीं, नहीं लगते हैं, नहीं लगते हैं कीड़े, सब अभी हम लोग उसी से ही कर रहे हैं
1: जी। और बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ये जानकारी या फिर ये जो खाद बनाने का जो तरीका है या फिर जो दवा आपने जिस तरह से बनाने का तरीका बताया, हमारे किसान भाई ज़रूर सुनेंगे और जिन्हें नहीं पता है वो भी इस तरह से जो है अपने फसलों के लिए दवा बना करके अपने मतलब फसलों में डालेंगे ताकि रोग नियंत्रण वो कर सके। और हीरा जी, आप समिति से भी जुड़ी हैं तो उसमें आपके लिए फ़ायदा और ये भी होता है कि जब भी समिति में कुछ ज़रूरी जानकारियाँ आती है तो आप जान लेते हैं और फिर जानने के बाद आप ट्रेनिंग के दौरान भी जो है सबको सिखाते हैं।
0: हाँ
1: जी, तो आशा करते हैं और आपको बधाई भी देना चाहेंगे कि आप अपने जो सीखा है वो लोगों को भी सिखा रही हैं तो उससे और लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है। तो हीरा जी, आपने इतना कीमती समय देकर इतनी कीमती जानकारी हमारे किसानों के लिए रखा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: किसान भाई बहनों, अभी हम जानकारी ले रहे थे प्राकृतिक तरीके से खाद तैयार करने की विधि, इस विषय में जानकारी दे रही थी हीरामणि पारिया और उनसे बातचीत कर रही थी सुनीता हांसदा। किसान भाई बहनों, आइए अब हम सुनते हैं यह संदेश।
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
4: मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: जलवायु परिवर्तन क्या है, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु हमेशा प्राकृतिक रूप से बदलती रही है, जिसमें अत्यधिक ठंड और गर्म अवधियां शामिल हैं। वैज्ञानिक बर्फ के परतों, पेड़ों के तनों पर बने छल्लों और अनेक प्रकार के कोरल को देखकर इन परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। लेकिन आज मानवीय गतिविधियां जैसे तेल, गैस और कोयला जलाना और जंगलों को काटना जलवायु परिवर्तन को तेजी से बढ़ा रही है। इससे मौसम में और भी ज्यादा उतार चढ़ाव, पौधों और जानवरों की हानि तथा पानी, भोजन और ऊर्जा की समस्याएं पैदा होती हैं। जलवायु परिवर्तन का मतलब है तापमान और मौसम के तरीकों में लंबे समय तक होने वाला बदलाव। यह एक रोचक तथ्य है। औद्योगिक युग से अब तक पृथ्वी का औसत तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ चुका है।
4: कार्यक्रम के अंत में अब हम आनंद लेते हैं पंच परगनिया लोकगीत का, ब्रजमोहन लोहार व साथियों के स्वर में।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, कुछ ही पल में आप सुनेंगे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा।

रजनीगंधा कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूं अवनीश कुमार सिन्हा। पहली फरमाइश है सेंटोला चाईबासा से भोला राम मधुर, विनोद कुमार पवन और मीना पवन की। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म नील कमल का ये नगमा। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी की।

अगली फरमाइश है, टाटानगर की ताड़ी से चंद्रमोहन पात्रो, चंद्रवती पात्रो, निखिल पात्रो, उजाला पात्रो, युवराज, सिवान और विराज की। आप सभी सुनना चाहते हैं आपके दीवाने इस फिल्म का गाना। आवाज़ है किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी की। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत आर डी बर्मन साहब का है।

0: है बड़ी, दोस्तों दोस्ती के लिए शुक्रिया। तुमको खुश देखकर मैं बहुत खुश हुआ।
1: ये आंख भर आई तो फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ।
0: तुमको खुश देखकर

अगली फरमाइश है पुणे से, पंकज बड़ोदे आर्या आदि बेटी बड़ोदे और चंद प्रभा बड़ोदे की। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म पवित्र पापी। इस फिल्म का गाना, आवाज़ है किशोर कुमार की।

अगली फरमाइश है, नगर निगम वार्ड 28 नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी बिहार से अकरम हुसैन प्रिंस बेगम इसरत अकरम बहू रवीना वसीम नवाशा अरहान बाबू नवासा हमजा बाबू नवासा मुजम्मिल बाबू नवासी हुमैरा नाज नवासी सुमैरा नवाज नवासी अबिया नाज साजिया साहिन नाज नाजिया नूरी नाज बच्चू शैख चीना शैख कोकिलवारा औरैया जिला मुजफ्फरपुर से मोहम्मद फैसल शैख नुसरत जहानाज कांति निकेतन से राजनगर से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता और रुद्र गुप्ता की। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म वक्त का ये नगमा, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी की है।

श्रोता सुन रहे हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से। अगली फरमाइश है रेलवे कॉलोनी बठिंडा पंजाब से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार की। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म गीत गाया पत्थरों ने। गायक कलाकार हैं आशा भोसले।

अगली फरमाइश है बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी की। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी और आसमान आज अंसारी, चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम और डॉक्टर अदीबा, सलीमपुर बक्सर से राज एसडी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और गुलफराज भागलपुरी। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म मुकद्दर का सिकंदर। इस फिल्म का गाना आवाज़ें हैं किशोर कुमार की।

पंचशील रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुर जिला बुलढाणा से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, कुमारी साधना, सुमित कुमार दामोदर और गोपाल पाटिल, आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म निकाह का ये गाना। आवाज़ें हैं सलमा आगा की।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: कार्यक्रम के अंत में आई सुनते हैं आप सबों की फरमाइश पे ये गीत। खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू मल्होत्रा, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद्र मल्होत्रा। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म सूरज का ये नगमा। आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी की है।

इस गीत के साथ ही श्रोता हमारा आज का फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा अब ही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चायवासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.7 MHz से। कुछ ही पल में आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए दो दिन के दौरे पर ताशकंद पहुंचे। नेपाल में बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 669 हुई। 287 भारतीय नागरिकों सहित 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। नेपाल ने भारत के राहत प्रयासों की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका के शिकागो बिजनेस राउंड टेबल सम्मेलन में भारत के विशाल बाजार आकार और दीर्घकालिक निवेश क्षमता को रेखांकित किया। इस वर्ष जुलाई तक 115 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को प्रति बूंद अधिक फसल लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत लाया गया। यूक्रेन के बुचा जिले पर रूस के ड्रोन हमले में 37 लोग मारे गए और ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पर आज शाम राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव ने उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए हैं।
1: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जनसंबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साथ

0: तथा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में कहा कि उज्बेकिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों का समृद्ध भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ताशकंद यात्रा के दौरान निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी चर्चा की संभावना है।
2: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें। ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
1: उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में अब तक 88 भारतीय नागरिकों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 287 भारतीय नागरिक लापता है। उन्होंने कहा कि 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता है। रसुवा स्थित एक जल विद्युत परियोजना से 4 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। आज 120 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: नेपाल में बुधवार को आई भीषण बाढ़ की त्रासदी के बाद से वहां फंसे भारतीय नागरिकों को खोजने और बचाने के लिए भारत ने अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। भारत की 6 फोरेंसिक विशेषज्ञ टीम मृत लोगों के शवों की पहचान करने के लिए डीएनए सैंपल की जांच में मदद करेंगी। इसके अलावा सुरंग में बचाव कार्य की जांच करने वाली एक विशेष तकनीकी टीम कल काठमांडू पहुंची, जिसने प्रभावित क्षेत्र में सुरंग से लोगों को बचाने के काम में सहायता शुरू कर दी है। वहीं विदेश मंत्रालय ने बचाव, राहत और लापता भारतीय नागरिकों की जानकारी जुटाने के लिए 24 घंटे चलने वाला कंट्रोल रूम बनाया है। काठमांडू और बीजिंग में स्थित भारतीय दूतावासों ने भी 24 घंटे की हेल्पलाइन शुरू की है, ताकि बाढ़ से प्रभावित भारतीय नागरिकों की मदद की जा सके। इसके अलावा भारत ने नेपाल में चल रहे बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री भेजी है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नेपाल सरकार ने संकट की इस घड़ी में भारत की तत्काल मदद की सराहना की है। नेपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को असाधारण रूप से उदार बताया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल ने भी भारत की सहायता के लिए आभार व्यक्त किया। वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले ने कहा कि बाढ़ के बाद भारत से राहत सामग्री भेजी गई है और भारत ने पुनर्निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का संकेत दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत नेपाल को लगातार सहायता भेज रहा है।
4: नेपाल में जो क्राइसिस पैदा हुई है उससे केवल नेपाली चिंतित नहीं है, भारत भी चिंतित है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि जितनी भी सहायता की आवश्यकता होगी और जो भी सहायता आवश्यक होगी वह सब भारत उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशल युक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। उन्होंने कहा कि देश का अगला आर्थिक विकास एआई, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, उत्पाद विकास, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में निहित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@airnewshindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है।
6: योजना का उद्देश्य खेत स्तर पर पानी के प्रयोग में दक्षता लाना और उसमें सुधार करना है। ये योजना जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए शुरू की थी। वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक इसका आधिकारिक नाम प्रति बूंद अधिक फसल किया गया और इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रमुख घटक के रूप में लागू किया गया। जना के अंतर्गत केंद्र सरकार 5 हेक्टेयर तक लाभार्थी को लघु सिंचाई प्रणाली लगाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों को 45% तक वित्तीय सहायता मिलती है। केंद्र सरकार ने पिछले 3 सालों में 8,123 करोड़ रुपए से अधिक की राशि इस योजना में जारी की है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत न केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है बल्कि अपनी सभ्यतागत विरासत, संस्कृति और क्षमताओं में दृढ़ विश्वास रखने वाला राष्ट्र भी है। लखनऊ में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। उन्होंने कहा कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है।
7: पिछले 12 वर्षों में शिक्षा की क्वालिटी, एसेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी बढ़ी। भारत का रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पहले के कंपेरिजन में 2 गुना हो गया। 34 ईयर्स में पहली बार हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई है। शिक्षा के क्षेत्र में हुए बदलावों और अच्छी पॉलिसीज का ये परिणाम है। आज देश के नौजवान स्टार्टअप खड़े कर रहे हैं, यूनिकॉर्न कंपनियां बना रहे हैं। 2015 में हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें स्थान पर, हमने अब 38वें स्थान पर अपनी पहुंच हासिल कर ली है।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज बेंगलुरु में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने उन्हें एक ऐसा राजनेता बताया जो विकेंद्रीकरण, त्रिस्तरीय शासन, सुदृढ़ संघवाद और लोकायुक्त की मजबूती के लिए खड़ा रहा। उन्होंने कहा कि रामकृष्ण हेगड़े का कार्यालय विश्वास का प्रतीक था। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस पार्टी पर दलित समुदाय को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस का दलित समुदाय को अपमानित करने का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत नरेंद्र मोदी सरकार ने B.R. अम्बेडकर की विरासत का सम्मान किया और उनसे जुड़े स्थलों को तीर्थ स्थल का दर्जा दिया है। पार्टी के एक अन्य प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर राजनीतिक लाभ के लिए हिंदुओं को बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने अनुच्छेद 370 का उल्लेख किया और कहा कि इसके प्रावधान जम्मू कश्मीर में वाल्मीकि समुदाय के साथ भेदभाव करते थे। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दलित समुदाय के खिलाफ भेदभाव का मुद्दा उठाया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है।
5: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास बुचा जिले में आज हुए एक भीषण रूसी ड्रोन हमले में 37 लोगों की मौत हो गई। हमले में 50 आवासीय इमारतें क्षतिग्रस्त हुई और कई घर और एक रेस्तरां भी भीषण आग की चपेट में आ गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि बुजुर्गों और विकलांगों के लिए बने एक देखभाल केंद्र और आवासीय इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय हॉकी की श्रेष्ठतम प्रतिभा के रूप में मेजर ध्यानचंद आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। श्री मांडविया ने लोगों से स्वस्थ और फिट रहने के लिए हर सप्ताह कम से कम 1 घंटा खेल के मैदान में बिताने का आह्वान किया।
8: आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर सारे देश में फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए 1 घंटे खेल के मैदान में कार्यक्रम दिया है। मुझे खुशी है, मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा, देश आगे बढ़ रहा, नया भारत का निर्माण हो रहा है।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
9: देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार निवेश कर रही है, जिसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई दे रहा है। ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और अन्य बड़ी खेल प्रतियोगिताओं में भारत का बेहतर प्रदर्शन दिखाता है कि देश खेलों के क्षेत्र में लगातार मजबूत हो रहा है। केंद्रीय बजट 2026-27 में खेल मंत्रालय के लिए 4,400 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है। भारत ने रियो 2016 में 2 पदक, टोक्यो 2020 में 7 पदक और पेरिस 2024 में

0: छह पदक जीते थे। वहीं पैरा ओलंपिक खेलों में भी भारत के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पदकों की संख्या रियो 2016 में 4 से बढ़कर पेरिस 2024 में 29 हो गई है। इसके अलावा एशियाई खेलों में भी भारत का प्रदर्शन लगातार बेहतर हुआ है। देश ने 2014 के एशियाई खेलों में 57 पदक जीते थे, वहीं 2023 में भारत ने रिकॉर्ड 107 पदक जीतकर इतिहास रचा। सकलेन अख्तर के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज संयुक्त सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा के सभी 5 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अपने पहचान पत्रों का उपयोग करके लॉगिन कर अपने विषय से संबंधित अंतिम उत्तर कुंजी देख सकते हैं। पंजाब सरकार ने 27 अगस्त को महाहड़ताल के अंतर्गत सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर जाने वाले लाखों कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागों के प्रमुखों को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले सभी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में कल मूसलाधार बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और विदर्भ में भी कल तेज बरसात की आशंका है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र और ओडिशा में बिजली चमकने तथा आंधी तूफान के आसार जताए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए 2 दिन के दौरे पर ताशकंद पहुंचे। नेपाल में बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 669 हुई। 287 भारतीय नागरिकों सहित 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। नेपाल ने भारत के राहत प्रयासों की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका के शिकागो बिजनेस राउंड टेबल सम्मेलन में भारत के विशाल बाजार आकार और दीर्घकालिक निवेश क्षमता को रेखांकित किया। इस वर्ष जुलाई तक 115 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को प्रति बूंद अधिक फसल लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत लाया गया। और ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Tashkent on a 2-day visit to boost bilateral ties between India and Uzbekistan. Death toll in Nepal flash floods rises to 669, over 2,000 people, including 287 Indian nationals, still missing. Nepal praises India's relief efforts following devastating floods. Finance Minister Nirmala Sitharaman highlights India's vast market size and long-term investment potential at Chicago Business Roundtable. Over 115 lakh hectares brought under per drop, more crop micro-irrigation scheme till July this year. 37 people killed following a Russian attack on Bucha district of Ukraine. And red alert issued for very heavy rainfall in Odisha till Monday. Heavy rainfall also likely over Bihar, Gangetic, West Bengal, Jharkhand and parts of northeastern states. Prime Minister Narendra Modi arrived in Tashkent, the capital of Uzbekistan, this evening on a 2-day visit aimed at further strengthening bilateral ties between India and Uzbekistan. He was warmly received by Uzbek President Shavkat Mirziyoyev at the airport. The two leaders are scheduled to hold detailed discussions on the entire gamut of bilateral relations and review progress in key areas of cooperation. Our correspondent covering the Prime Minister's visit reports that the entire Tashkent city has been decked up with Indian flags and colourful hoardings to welcome Prime Minister Modi on his 4th visit to the Central Asian country.
3: The Indian diaspora, comprising mostly of medical students in Tashkent, gathered for a special welcome for Prime Minister.

नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय युवा पत्रिका युवा भारती में आपका स्वागत है। मैं हूँ नवोदता। युवा होना केवल उम्र का एक पड़ाव नहीं है, ये अपने शरीर को स्वस्थ रखने, अपने समय की भाषा समझने, स्वयं को पहचानने और अपने सपनों के लिए निरंतर साधना करने का समय है। आज के युवा भारती में हम चलेंगे युवा जीवन की ऐसी ही चार दिशाओं में, जहां सही पोषण है, बदलती अभिव्यक्ति है, स्वयं की तलाश है और सपनों के साथ कला की साधना भी है। सही पोषण, सशक्त युवा, विकास की पहली शर्त। कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ और सजग मन का निवास होता है, और जब बात युवाओं की हो तो ये केवल एक कहावत नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के भविष्य से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सत्य है। हर साल 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है लोगों को संतुलित आहार, स्वस्थ खान पान और पोषण के महत्व के प्रति जागरूक करना। साल 1982 में शुरू हुई ये पहल आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, शायद पहले से कहीं अधिक, क्योंकि आज हमारी थालियां भले भरी हुई हो लेकिन क्या वो पोषण से भरपूर है? तेज रफ्तार जिंदगी, अनियमित दिनचर्या और सुविधा के नाम पर बढ़ता जंक फूड खासकर युवाओं की खान पान संबंधी आदतों को प्रभावित कर रहे हैं। भोजन अब कई बार भूख से अधिक स्वाद और सुविधा का विषय बन गया है। लेकिन पोषण केवल पेट भरने का नाम नहीं है, ये शरीर को शक्ति देता है, मन को सजग रखता है और हमारे सपनों को पूरा करने की क्षमता भी। युवावस्था जीवन का वो दौर है जब शरीर संभावनाओं से भर रहा होता है।

0: और मन भविष्य के सपनों को आकार दे रहा होता है। ऐसे में सही पोषण केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य का प्रश्न नहीं बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय विकास की भी पहली शर्त है। हमें अपनी पारंपरिक भोजन पद्धति की ओर भी देखना होगा। दालें, अनाज, मोटे अनाज, हरी सब्जियां, फल और स्थानीय खाद्य पदार्थ हमारी थाली को केवल स्वादिष्ट ही नहीं संतुलित और समृद्ध भी बनाते हैं। और श्री अन्न यानी मिलेट्स को हम कैसे भूल सकते हैं। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह हमें यही याद दिलाता है कि स्वस्थ भविष्य किसी बड़े अवसर की प्रतीक्षा में नहीं होता, उसकी शुरुआत रोज हमारी अपनी थाली से होती है। आइए पोषण को अभियान भर न रहने दें बल्कि अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं, क्योंकि सही पोषण से ही बनेगा सशक्त युवा और सशक्त युवा ही रचेंगे स्वस्थ, समर्थ और विकसित भारत का भविष्य। एक स्वस्थ शरीर ही एक सजग मन और सक्रिय जीवन की बुनियाद बनता है। लेकिन युवा होने का अर्थ केवल स्वस्थ और सक्षम होना ही नहीं अपने समय के साथ संवाद करना भी है। हर पीढ़ी अपनी भाषा गढ़ती है, कभी शब्दों से, कभी संकेतों से और कभी ऐसे छोटे छोटे वाक्यों से जिनमें पूरी दुनिया छुपी होती है। तो आज के युवा भाषा का एक दिलचस्प कोट समझने का ही एक प्रयास है हमारी अगली प्रस्तुति, कह तो दिया नो कैप। आलेख और प्रस्तुति ओमवेश उपाध्याय की है, जो प्रसारण पत्रकार और रणनीतिक संचार विशेषज्ञ है।
1: हाय फ्रेंड्स, पिछले साल एक इंटरनेशनल डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर अनाउंस किया। यह वर्ड था 6-7, बस दो अंक, ना कोई डेफिनेशन ना कोई मीनिंग। डिक्शनरी ने खुद माना कि इसका मतलब बताना मुश्किल है। कई स्कूलों ने इसे क्लास में बोलने पर रोक लगाई और बच्चों ने इसे और ज्यादा बोलना शुरू कर दिया। सुनने में यह मजाक लगता है, लेकिन इसी साल हमारी संसद के भीतर एक विधेयक पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ओर के सांसद इसी किस्म की वोकैब में एक दूसरे को जवाब दे रहे थे। ये जेंजी लिंगो है, सड़क से सांसद तक ओमनी प्रेजेंट। और यंगस्टर्स की अपनी अलग वोकैब कोई नई बात नहीं है। लिंग्विस्ट दशकों से यह कहते आए हैं कि हर पीढ़ी अपनी एक इंटरनल लैंग्वेज करती है, एक ऐसी वोकैब जो यह तय करती है कि कौन इस समूह के अंदर है और कौन बाहर। अब आप भारत का अपना उदाहरण समझिए। इंग्लिश शब्द पहली बार 1967 में दर्ज हुआ था, यानी 60 साल से हम हिंदी और अंग्रेजी को एक ही वाक्य में मिला रहे हैं। झकास शब्द 1985 की एक फिल्म से निकलकर पूरे देश की जुबान पर चढ़ गया। मुंबईया बोली से बिंदास आया, टाइम पास आया, जुगाड़, दादागिरी, फंडा आया। और आज ये सारे शब्द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में दर्ज हैं। एक समय जिन शब्दों को गली मोहल्ले की भाषा कहकर नाक भौं सिकोड़ी जाती थी, वे आज दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित डिक्शनरी में इंडियन इंग्लिश की 900 से ज्यादा एंट्रीज का हिस्सा हैं। अब असली सवाल, ये जेंजी ऐसा बोलते क्यों हैं? दो वजहें हैं। पहली, यह दौर। पहले एक शब्द कॉलेज की कैंटीन से मोहल्ले तक, फिर किसी फिल्म तक और तब देश भर में पहुंचता था। इसमें सालों लग जाते थे। अब बीच में ना फिल्म है ना अखबार, बस एल्गोरिदम है। और एल्गोरिदम बाजार की तरह काम करता है, जो दिखता है वही बिकता है। जेंजी लिंगो तेज बिकता है, इसलिए आपके सामने है। दूसरी, ब्रेविटी, यानी गागर में सागर भरना। एक पिक्चर, एक लाइन और पूरी तरह बात कही जा सकती है। जिस बात को कहने में मिलेनियंस को पूरा पैराग्राफ लग जाता है, वे एक मीम में कह देते हैं।
2: मेरा नाम अमृता सिन्हा है, मैं सूरत में रहती हूँ और मैं एक आईटी कंपनी के साथ एज अ कम्युनिकेशन प्रोफेशनल काम करती हूँ। जेंजी लैंग्वेज कॉन्शियसली बनाई हुई कोई भाषा नहीं है, बल्कि ये हमारे रेगुलर इंटरनेट यूसेज और मीम स्क्रोलिंग से आई है और अब हमारे जनरेशन के हर दिन के कॉन्वर्सेशन का एक नेचुरल पार्ट बन चुकी है। और मुझे लगता है जब मैं ऐसा कोई शब्द यूज करती हूँ अपने एल्डर जेनरेशन के सामने और उनका बहुत ही ब्लैंक एक्सप्रेशन आता है, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उनके जेनरेशन का कोई स्लैंग या रेफरेंस यूज करके उन्हें समझा पाऊँ। जैसे मैंने जब अपनी दादी को बताया कि डिलीवरी आपके ख्याली पुलाव पकाने का छोटा वर्जन है, तो अब उन्हें बहुत मजा आता है डिलीवरी वर्ड यूज करने में।
1: भारत में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की संख्या अब लगभग 1 अरब है, यानी 100 करोड़। वहीं जेंजी यानी 1997 से 2012 के बीच जन्मी जनरेशन आबादी के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी पीढ़ी है, लगभग 40 से 50 करोड़ के आसपास। और ये अपने आप में एक बड़ा कारण है कि अब आप जेंजी को सीरियसली लें। तो आइए समझते हैं कि जेंजी की भाषा किस तरह की है। पिछले साल दुनिया के बड़े

0: शब्दकोशों ने जो शब्द चुने उन पर गौर कीजिए। ऑक्सफोर्ड ने चुना रेज बेट, यानी ऐसी सामग्री जो जानबूझकर गुस्सा भड़काने के लिए बनाई जाती है ताकि ज्यादा क्लिक मिले। कैम्ब्रिज ने चुना पैरा सोशल, यानी किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ाव महसूस करना जो आपको जानता तक नहीं। मरियम वेबस्टर ने चुना स्लॉप, यानी मशीन से थोक में बनाया गया घटिया कंटेंट, और उससे पिछले साल ऑक्सफोर्ड का शब्द था ब्रेन रॉट। ये मजाकिया शब्द नहीं, ये इस जनरेशन का डिक्शन है। अब एक दिलचस्प एनालॉजी। 20वीं सदी में रेवोल्यूशन का सबसे पहचाना निशान क्या था? हवा में उठी हुई एक बंद मुट्ठी, एक फिस्ट। ये फिस्ट हर महाद्वीप पर दिखी, बस पिक्चर ही काफी थी। अब इस आइकॉनिक फिस्ट की जगह एक और पिक्चर लेती जा रही है, और यह पिक्चर किसी विचारधारा से नहीं, एक जापानी कॉमिक से आई है। 1997 में जापानी चित्रकार इचिरो ओडा ने एक सीरीज शुरू की, वन पीस। उसका नायक है मंकी डी लूफी, सर पर स्ट्रॉ हैट पहने एक नौजवान समुद्री यात्री जो अपने साथियों के साथ एक भ्रष्ट विश्व व्यवस्था से टकराता है। उसके ग्रुप का निशान है एक कार्टून स्कल, और उस स्कल पर वही स्ट्रॉ हैट है। भारतीय जेंजी के बीच बेहद पॉपुलर लेखक और पॉडकास्टर जेंजी के इस व्यवहार का बेहद अच्छे तरीके से आकलन करते हैं। उनका कहना है कि आज की सटायर से भरी दुनिया में बात तेज फैलती है, और इसीलिए आज के दौर में ये जेंजी का मुख्य औजार भी बन जाता है। जयपुर साहित्य उत्सव में उन्होंने इस जनरेशन को कल्चरल लेबर तक भी कहा। उनका कहना है कि जेंजी एल्गोरिदम, ब्रांड और ट्रेंड के लगातार दबाव में जी रहे हैं। मतलब प्रेशर तो है, पर उन्होंने एक जरूरी चेतावनी भी दी जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। आप जेंजी को कैटेगराइज नहीं कर सकते। दिल्ली का नौजवान किसी इंटरनेशनल पॉप कॉन्सर्ट के लिए उत्साहित हो सकता है, राजस्थान का नौजवान किसी लोक कलाकार के लिए। जेंजी एक सुविधाजनक लेबल है, कोई एक यूनिफॉर्म वॉइस नहीं, और ऐसी ही उसकी भाषा है, किसी भी लेबल से मुक्त। तो जब हम कहते हैं कि आजकल के बच्चों की भाषा समझ में नहीं आती, तो असल में हम भाषा की नहीं, हमारे जनरेशनल गैप की बात कर रहे होते हैं, जो आज से ज्यादा कभी नहीं था। आज ही हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स के लिए एक चैलेंज भी है और स्कोप भी। इन सब के बीच हमारे लिए सबसे उम्दा उदाहरण है हमारे प्रधानमंत्री जी, विश्व के सबसे चर्चित चेहरे, मोस्ट फॉलोड पॉलिटिकल लीडर ऑन द प्लैनेट और मास्टर कम्युनिकेटर। बीते कुछ हफ्तों में उनके इंस्टाग्राम की भाषा बदली है, लंबे औपचारिक भाषणों की जगह छोटे डायरेक्ट मोबाइल से बने वीडियोस ने ली है, वर्टिकल फ्रेम में, सामान्य बोलचाल में। जुलाई के आखिर में एक वीडियो की शुरुआत ही इस तरह हुई, हाय फ्रेंड्स। किसी वीडियो में एक प्रधानमंत्री का हाय फ्रेंड्स कहना कोई छोटी बात नहीं है, या कम्युनिकेशन अप्रोच के बदलने का संकेत है, क्योंकि इसमें एक एक्सेप्टेंस छिपा है कि जेंजी तक पहुंचना है तो जेंजी की भाषा में पहुंचना होगा। प्लेटफॉर्म वही चलेगा जहां जेंजी पहले से मौजूद है, और लिंगो वही चलेगा जो जेंजी का अपना है, नो कैप। दोस्तों ध्यान रहे, कम्युनिकेशन का सबसे पुराना नियम भी यही है। हालांकि हमें ये भी ध्यान देना होगा, जो ब्रेविटी इस भाषा को ताकत देती है, वही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। जो वो कैब हर 3 हफ्ते में बदल जाए, बेहद छोटी हो, वह याद कम रहती है। जो सटायर हर बात पर लागू हो, वह धीरे धीरे विषय की गंभीरता छीन लेता है। और जिस मंच पर गुस्सा सबसे तेज बिकता हो, वहाँ गुस्सा भड़काना एक कारोबार बन जाता है। रेज बेट इसी शब्द की सच्चाई है। वायरल हो जाना और बदलाव ले आना दोनों एक चीज नहीं। तो डियर जेंजी, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दैट। हाँ, भाषा बदलती रहती है, बदलती रहेगी। टाइम पास और जुगाड़ कभी सड़क की भाषा थे, आज वो कैब का हिस्सा है। जो आज डेलुलू है, वह किसी दिन संसदीय बहस का सामान्य शब्द होगा, बल्कि हो भी चुका है। तो इस पूरे शोर के बीच एक बात याद रखने लायक है, शब्द और अंदाज बदल सकते हैं, लेकिन संवाद की जरूरत नहीं बदलती। भाषा चाहे कोई भी हो, बात तभी आगे बढ़ती है जब हम एक दूसरे को सुनने की कोशिश करें। तो कह तो दिया, नो कैप।
1: अभी आपने सुना, कह तो दिया, नो कैप। आज की युवा भाषा के दिलचस्प कोड को समझने का प्रयास था ये लघु प्रस्तुति। आलेख और प्रस्तुति थी ओमवेश उपाध्याय की, जो प्रसारण पत्रकार और रणनीतिक संचार विशेषज्ञ हैं। भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं, संवाद के तरीके बदलते हैं, लेकिन एक सवाल शायद हर पीढ़ी के अंदर बना रहता है, मैं कौन हूं और मैं वास्तव में क्या खोज रहा हूं? दुनिया को जानने और उसके साथ कदम मिलाने की दौड़ में क्या कभी हम अपने भीतर झांकने के लिए भी ठहरते हैं? इसी तलाश की एक अनोखी यात्रा हमें ले चलती है ऋषिकेश, जहां देश के 14 राज्यों से आए 50 युवाओं ने अद्वैत वेदांत के माध्यम से स्वयं को समझने और स्व की खोज का प्रयास किया। हमारी अगली प्रस्तुति है ये लघु वृत्त चित्र, दुनिया से आगे खुद तक। सौजन्य साहित्य और संस्कृति कर्मी विशाल पांडे, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक अध्यापक भी हैं।
2: गंगा की अविरल धारा, हिमालय की शांत और विराट उपस्थिति, आश्रम का अनुशासित जीवन, गुरु का सानिध्य और आचार्य शंकर की ज्ञान परंपरा से संवाद, इन सबके बीच 10 दिन ऐसे बीते जिन्होंने मुझे भारतीय दर्शन को समझने का ही अवसर नहीं दिया, स्वयं को देखने और समझने की एक नई दृष्टि भी दी। ये अवसर था अद्वैत वेदांत जागरण शिविर 2026 का। मध्य प्रदेश संस्कृति मंत्रालय द्वारा युवाओं को भारतीय ज्ञान परंपरा और अद्वैत वेदांत से परिचित कराने के उद्देश्य से आयोजित यह 10 दिवसीय शिविर उत्तराखंड के ऋषिकेश में संपन्न हुआ। इस शिविर की एक विशेष बात थी, देश के अलग अलग हिस्सों से आए युवाओं का एक साथ होना। 14 राज्यों के युवा इस शिविर में सहभागी बने। देश से 1200 युवाओं की प्रविष्टियां प्राप्त हुई, उनमें से 300 युवाओं का साक्षात्कार हुआ और अंततः 50 युवाओं का चयन इस शिविर के लिए किया गया। एक साझा जिज्ञासा भारतीय ज्ञान परंपरा को समझने की, और शायद उससे भी बड़ा प्रश्न, मैं कौन हूं। यही प्रश्न अद्वैत वेदांत की यात्रा का एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है। 10 दिनों तक शिविर में आदि गुरु आचार्य शंकर द्वारा प्रतिपादित ज्ञान परंपरा से जुड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ तत्वबोध का अध्ययन कराया गया। तत्वबोध अर्थात तत्व का बोध, अपने अस्तित्व के मूल को समझने का प्रयास। इस अध्ययन की सबसे बड़ी विशेषता थी गुरु का सानिध्य। स्वामी परमात्मानंद सरस्वती के मार्गदर्शन में तत्वबोध का अध्ययन हुआ। इस पूरे अनुभव को मैं केवल एक कार्यक्रम की तरह या शिविर के रूप में ही नहीं देखता हूँ, स्वयं इस अद्वैत वेदांत जागरण शिविर का एक सहभागी भी रहा हूँ। तत्वबोध के अध्ययन ने मुझे अपने बारे में, अपने मन और अपनी पहचान के बारे में नए ढंग से सोचने का भी अवसर दिया। कई साथियों के साथ रहने, उन्हें जानने और समझने का भी अवसर मिला। असल में इन साथियों और सहपाठियों के लिए भी यात्रा बेहद महत्वपूर्ण रही। ऐसी ही हमारी एक साथी बेंगलोर से जुड़ी हैं, दीक्षा ओम। आइए जानते हैं उनके अनुभव शिविर के बारे में।
3: इस शिविर की जानकारी मुझे अपने कॉलेज डिपार्टमेंट से हुई, जहाँ पर मैं योग दर्शन की पढ़ाई कर रही हूँ। इस शिविर में जाने का अवसर मेरे लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात रही, क्योंकि मैंने वहाँ पर जाकर बेहद ही खूबसूरत बातें जानी। उन सभी बातों में से सबसे पहली जो बात है वो ये है कि मैंने जीवन को सही प्रकार से देखने के नई दृष्टिकोण को जाना। 90% से भी ज़्यादा हमारी समस्याएं एक गलत मेंटालिटी, गलत थॉट प्रोसेस और एक डिस्टॉर्टेड परसेप्शन के कारण है। स्वामी जी ने हमें सिखाया कि किस तरीके से हम चीज़ों को एक सही ढंग से देख सकते हैं और जीवन में कर्तव्य क्या है अपने प्रति, समाज के प्रति और विश्व के प्रति। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैंने जानी वो ये है, एक गुरु की हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस होती है। जब हम कोई भी ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से सीखते हैं तो किस प्रकार से वो हमारे भीतर और गहरा उतरता है। तीसरी चीज़ जो मैंने जानी वो ये है कि किस प्रकार शास्त्र आपके शस्त्र का काम कर सकते हैं। जब हमें सही ज्ञान होता है तो हम उस वीर योद्धा की भांति हैं जो एक युद्ध भूमि में सशक्त खड़ा होता है। उसके सामने चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए वो डरता नहीं है, उसे अपने ज्ञान पर और स्वयं पर आत्मविश्वास होता है। इसलिए मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत रहा यह अनुभव।
2: हम अक्सर स्वयं को अपनी उपलब्धियों से पहचानने लगते हैं। मैं क्या करता हूँ, मेरी नौकरी क्या है, मैं कितना सफल हूँ, मेरे पास क्या है, दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन अद्वैत वेदांत एक क्षण के लिए इन सब प्रश्नों से आगे ले जाकर पूछता है, इन सब के पीछे तुम कौन हो। शायद यही प्रश्न हमें भीतर से स्वतंत्र करता है और यही अद्वैत वेदांत की प्रासंगिकता है। यह केवल सन्यासियों के लिए नहीं, यह केवल किसी विशेष आयु के लोगों के लिए नहीं, यह जीवन को समझने की एक दृष्टि है, एक ऐसी दृष्टि जो हमें बाहरी उपलब्धियों के साथ साथ भीतर की समृद्धि की ओर भी देखना सिखाती है। इस शिविर में मेरे साथ प्रतिभाग कर रहे मेरे एक और सहपाठी जो कैथल हरियाणा में योग के शिक्षक हैं, अमन वर्मा, जानते हैं शिविर में उनका अनुभव।
4: स्वामी जी के प्रवचन दार्शनिक होने के साथ साथ बहुत ज्यादा मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टियों और अनुभवों से भरपूर थे। उस चीज के कारण हम लगातार अपने बारे में भी मनन करते और ग्रंथ के बारे में भी। इतने सारे युवाओं के बीच में एक साथ आकर के पढ़ना, इतने सारे अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हुए प्रतिभागियों के बीच में उस ग्रंथ को जानना, पढ़ना, साथ में संवाद करना, वार्ताएं करना, उस चीज के अनुभव ने मुझे इस ग्रंथ के साथ साथ, इस दर्शन के साथ साथ जीवन की जो ऊर्जा है, जीवंतता है, उसका जो यौवन है, उसको भी अनुभव करने का मौका मिला।
2: 10 दिन सुनने में बहुत कम, लेकिन कभी कभी 10 दिन भी जीवन में एक लंबे अध्याय की तरह उतर जाते हैं। ऋषिकेश से लौटते समय हमारे साथ ढेर सारी तस्वीरें और स्मृतियां थीं, और इसके साथ ही हमारे साथ था तत्वबोध का अध्ययन। अद्भुत वेदांत जागरण शिविर 10 दिनों का आयोजन मात्र नहीं, निरंतर चलने वाली एक यात्रा का हिस्सा भी है। यदि आपके भीतर भी भारतीय ज्ञान परंपरा को समझने की जिज्ञासा है, यदि आप आचार्य शंकर के ग्रंथों का अध्ययन करना चाहते हैं, यदि आप गुरुजनों के सानिध्य में रहकर इस परंपरा को निकट से अनुभव करना चाहते हैं, तो आप मध्य प्रदेश संस्कृति मंत्रालय की एकात्म धाम पहल से संबंधित जानकारी उनकी वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में हम बहुत कुछ खोजते हैं, सफलता खोजते हैं, सुख खोजते हैं, सम्मान खोजते हैं, अपनी पहचान खोजते हैं, लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा हमें एक और खोज की ओर ले जाती है, स्वयं की खोज। और शायद यही खोज सबसे कठिन भी है और सबसे सुंदर भी।
1: दुनिया से आगे खुद तक। अभी आपने सुना ये लघु वृत्त चित्र। सौजन्य साहित्य और संस्कृति कर्मी विशाल पांडे, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक अध्यापक भी हैं। खुद को जानने की यात्रा भीतर से शुरू होती है, लेकिन उसके अर्थ जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देते हैं। अपने सपनों को पहचानना, अपनी राह चुनना और चुनौतियों के बीच उस राह पर बने रहना, यही तो युवा होने की असली परीक्षा भी है। किताबें हैं, करियर की तैयारी है, भविष्य की चिंताएं हैं, और इनके बीच एक कला है जिसे केवल समय नहीं, समर्पण भी चाहिए। जब मंच पर मोहिनीअट्टम की मुद्राएं आकार लेती हैं और मन में भविष्य की मंजिलें भी साथ साथ चलती हैं, तो जीवन एक खूबसूरत कदम ताल बन जाता है। प्रस्तुत है लघु रूपक मंच पर मोहिनी, मन में मंजिल। किताबों के खुले पन्ने, असाइनमेंट की समय सीमा, आने वाली परीक्षाओं का तनाव, ऐसे में जरा सोचिए जब कोई स्टूडेंट कॉलेज के भाग दौड़ के तुरंत बाद अपनी किताबें समेत शाम होते ही सीधे एक शास्त्रीय नृत्य के रियाज में जाकर शामिल हो जाए।
5: आज की जनरेशन सिर्फ डिग्री हासिल करने की रेस में नहीं दौड़ रही। एक तरफ करियर बनाने का प्रेशर है, तो दूसरी तरफ अपने अंदर के उस कलाकार को जिंदा रखने की जिद, जो शॉर्टकट नहीं बल्कि घंटों का सब्र और कड़ा रियाज मांगता है।

0: के तटीय क्षेत्रों से विकसित हुई मोहिनीअट्टम 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक है।
1: आंदोलन यानी लहरों जैसी सुगम शारीरिक गतियां, सोपानम संगीत की धीमी लय और नयन अभिनय यानी आंखों का बारीक संचालन इसकी मुख्य तकनीकी पहचान है।
0: कथकली की नाटकीयता या भरतनाट्यम की तेज पदचाप के विपरीत मोहिनीअट्टम का मुख्य आधार अति सूक्ष्म ठहराव और शारीरिक संतुलन है।
1: इसीलिए आज के फास्ट पेस्ट दौर में इस विधा की पारंपरिक संरचना को बिना बदले नई पीढ़ी को सौंपना एक बेहद बारीक काम है।

0: गुरु के तौर पर आज की व्यवहारिक चुनौतियों के बीच इस क्लासिकल तकनीक को युवा कलाकारों तक कैसे पहुंचाया जा रहा है, आइए सुनते हैं गुरु जयप्रभा मेनन जी से।
1: क्लासिकल में ये मोहिनीअट्टम अकेले एक नृत्य रूप है जो सोलो में अरे सिंगल परफॉर्मेंस में आता है, एकहारिया में आता है। हमारे शास्त्रीय नृत्य रूप के दो तरह के, तांडव और लास्य। तो मोहिनीअट्टम लास्य कैटेगरी में आता है। लास्य मतलब क्या है? लास्य इज जेंटल, सॉफ्ट, ब्यूटिफुल एंड ग्रेसफुल, यानी और एकदम सरलता में बोले कर ये स्त्रैण नृत्य रूप है। फेमिनाइन ब्यूटी इसमें ज्यादा है। मोहिनीअट्टम में बॉडी डिसिप्लिन एंड माइंड डिसिप्लिन की बहुत जरूरत होती है।
2: आज की डिजिटल दुनिया शॉर्टकट और इंस्टेंट रिस्पॉन्स पर चलती है, लेकिन मोहिनीअट्टम जैसी विधा महीनों और सालों का सब्र मांगती है। ऐसे में पढ़ाई के तनाव और रियाज के अनुशासन के बीच टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है? क्या ये कला उनकी पढ़ाई में रुकावट बनती है या उल्टा उनका फोकस और बेहतर करती है?
3: मेरा नाम अनश्वर है एंड अभी मैं 12th क्लास में हूँ। 12 साल से भरतनाट्यम सीख रही हूँ, पिछले 5 साल से मोहिनीअट्टम। एंड इट्स बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम स्टडीज मैं लाइक ज्यादा चीजों पे फोकस नहीं कर पाती एंड डांस क्लास प्लेज अ वेरी ह्यूज रोल। और इसमें नॉट ओनली माय कल्चर बट मैं बाकी चीजों को भी एक्सपीरियंस कर पाती हूँ, तो उसका एक्सपोजर मिलता है एंड तुम्हें पता चलता है कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। एंड मैंने सोचा भी है कि अगर आगे जाके मैं जस्ट इन केस अपने डांस को प्रमोट करना चाहूँ, आई कैन स्टार्ट टेकिंग डांस क्लासेस एंड ऑल।

0: मंच का आत्मविश्वास सिर्फ उस परफॉर्मेंस तक सीमित नहीं रहता बल्कि उनके व्यक्तित्व और सोच में भी झलकने लगता है।
1: माय नेम इज राजश्री आर, आई एम परस्यूइंग बायोकेमिस्ट्री ऑनर्स, इट्स माय सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज। क्लासिकल डांस के टूर्स बहुत अट्रैक्टेड रही हूँ, डांसिंग इज माय पैशन, बट कहीं ना कहीं मुझे फ्यूचर को लेके भी थोड़ा बहुत कंसर्न है कि इफ आई एम परस्यूइंग दिस फील्ड मैं कर पाऊंगी कि नहीं, इवन दो आई नो कि मैं कर लूंगी, बट जस्ट टू बी ऑन अ सेफ साइड आई एम परस्यूइंग बायोकेमिस्ट्री। बट अगर मुझे मौका मिलता है कि मैं इसको फुल टाइम पे लेके जाऊं ट्रेडिशनल मोहिनीअट्टम एंड भरतनाट्यम, आई विल डेफिनेटली गो फॉर इट।
0: दिन भर की किताबी पढ़ाई और करियर की आपाधापी के बीच मोहिनीअट्टम के इन कठिन तट्टाडवू और रामायणम इलाकीअट्टम का कड़ा अभ्यास ये साबित करता है कि युवाओं में कला के प्रति समर्पण कितना गहरा है।
2: शास्त्रीयता की मर्यादा को बिना बदले आधुनिक जीवन शैली के साथ इस विधा को साधते इन युवा कलाकारों की ये यात्रा वाकई दिलचस्प है। मंच पर थिरकते ये कदम और मन में अपनी मंजिल को पाने का ये जज्बा यूं ही बना रहे, हमारी शुभकामनाएं।
3: मंच पर मोहिनी, मन में मंजिल, अभी आपने सुना ये लघु रूपक। आलेख प्रांजल, वाचन स्वर प्रांजल और नेत्रा, प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को नमन करते हुए आइए एक नजर डालें उन युवा कदमों पर जो आज भारतीय खेलों को नई रफ्तार दे रहे हैं। हाल के दिनों में भारतीय युवाओं ने दुनिया के अलग अलग खेल मैदानों पर अपनी चमक बिखेरी। 18 वर्षीय अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतकर एक इतिहास रचा। एथलेटिक्स में अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में बसंत कुमार मेघवाल ने ऊंची कूद में रजत और शहनवाज खान ने लंबी कूद में कांस्य पदक जीतकर भारतीय उम्मीदों को नई ऊंचाई दी। कुश्ती के विश्व अंडर 20 मंच पर भी भारतीय बेटियों ने दम दिखाया। मानसी लाठर ने रजत जबकि तन्वी और कोमल ने कांस्य पदक अपने नाम किए और शतरंज के बिसात पर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड चेस टूर जीतकर भारतीय प्रतिभा का एक और ऐतिहासिक अध्याय लिखा है। मेजर ध्यानचंद की विरासत हमें याद दिलाती है कि खेल केवल जीत का नाम नहीं अनुशासन समर्पण और निरंतर साधना का नाम है। आज का युवा भारत उसी विरासत को आगे बढ़ा रहा है। मैदान बदल रहे हैं, खेल बदल रहे हैं, लेकिन तिरंगे को ऊंचा उठाने का जज्बा वही है। इसी के साथ संपन्न होता है युवा भारती का आज का अंक। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में
1: ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं गजलों का कार्यक्रम महफिल। सबसे पहले आइए सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं चंदन दास की आवाज में ये गजल।

चंदन दास द्वारा गाय इस गज़ल के साथ ही श्रोता हमारा आज का गज़लों का कार्यक्रम महफिल अब ही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुरों के रंग। इसमें पहला गाना है फिल्म

अभी आपने सुना फिल्म मोहब्बत इसको कहते हैं। गायक कलाकार थे आशा भोसले और मुकेश। और आइए सुनते हैं फिल्म प्रोफेसर में मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं फिल्म सहनाई का ये नगमा, आवाजें हैं मोहम्मद रफी की।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: इसके साथ ही श्रोता हमारा आज का शुरू के

कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज से। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पर आज शाम राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव ने उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए हैं।
1: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में अब तक 88 भारतीयों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 287 भारतीय नागरिक लापता हैं। उन्होंने कहा कि 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। रसुवा स्थित एक जल विद्युत परियोजना से 4 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। आज 120 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विश्व बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच पर भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशलयुक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। उन्होंने कहा कि देश का अगला आर्थिक विकास AI, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, उत्पाद विकास, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में निहित है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है। योजना का उद्देश्य खेत स्तर पर पानी के प्रयोग में दक्षता लाना और उसमें सुधार करना है। यह योजना जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए शुरू की थी। वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक इसका आधिकारिक नाम प्रति बूंद अधिक फसल किया गया और इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रमुख घटक के रूप में लागू किया गया। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो CBN की मध्य प्रदेश इकाई ने ऑपरेशन वज्र 2 के अंतर्गत एक बड़े अंतर्राज्यीय औषधि तस्करी मामले में 66 लाख से अधिक मनोरोगी गोलियां जब्त की हैं। ये खेप मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ अधिनियम 1985 की संबंधित धाराओं के तहत जब्त की गई है। इस अभियान में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी और एक ट्रक भी जब्त हुआ है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि CBN ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश गलियारे के साथ मनोरोगी दवाओं की एक बड़ी अवैध खेप की आवाजाही के संबंध में विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई की। मौसम विभाग ने उड़ीसा में अगले 2 दिनों के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में कल मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। इसके अलावा बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और विदर्भ में भी कल तेज बरसात की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र और उड़ीसा में बिजली चमकने तथा आंधी तूफान के आसार जताए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Nina Arakel. Prime Minister Narendra Modi arrived in Tashkent, the capital of Uzbekistan, this evening on a two-day visit aimed at further strengthening bilateral ties between India and Uzbekistan. He was warmly received by Uzbek President Shavkat Mirziyoyev at the airport. Our correspondent covering the Prime Minister's visit reports that the entire Tashkent city has been decked up with Indian flags and colorful hoardings to welcome Prime Minister Modi on his fourth visit to the Central Asian country.
1: The Indian diaspora, comprising mostly of medical students in Tashkent, gathered for a special welcome for Prime Minister Modi. Tomorrow, Prime Minister Narendra Modi and President of Uzbekistan, Mr. Shavkat Mirziyoyev, will reflect upon the entire spectrum of bilateral relationship that are based on civilizational ties and built over centuries and strengthened by strong people-to-people ties. The two leaders would review cooperation in trade and investment, defense, digital connectivity, energy, education and people-to-people domains at the Presidential Palace. They will also share perspectives on advancing the shared development vision of Viksit Bharat 2047 and Uzbekistan 2030. Prime Minister Modi is also expected to visit the Shastri Memorial in Tashkent and the Mahatma Gandhi Center at the Tashkent State University of Oriental Studies. Sushil Chandra Tiwari, Akashvani News, Tashkent, Uzbekistan.
2: The death toll from devastating flash floods in Nepal and Tibet has risen to 669, while over 2,000 people remain missing. Search and rescue operations are underway across the affected districts of the Himalayan nation. Officials said the police are coordinating with residents and other agencies to locate missing people and assist those stranded by the floods. An 11-member technical team from India carried out on-site reconnaissance of hydropower tunnels in Nepal's flood-affected areas today to facilitate search and rescue of stranded individuals. The team comprising doctors, paramedics and tunnel engineers had arrived in Kathmandu yesterday. Today they reached Trishuli in Nuwakot district to assist in efforts to rescue workers trapped in a tunnel belonging to a hydropower project. In a social media post, the Indian Embassy in Kathmandu said today a specialized technical team from India carried out on-site reconnaissance of hydropower tunnels in the area affected by the flash flood, which will help in facilitating early search and rescue of stranded individuals. Nepali security forces have so far rescued 191 workers from tunnels at various hydropower projects in the country, according to the Nepal Army. Union Finance and Corporate Affairs Minister Nirmala Sitharaman today said that as global companies reassess their supply chains and capital allocation, India offers not only the scale of a vast market, but also the depth of a long-term investment and operating platform. She made these remarks while addressing a high-level business roundtable with leading investors and business leaders in Chicago, United States. Ms. Sitharaman also emphasized that India's investment appeal lies in convergence of scale, sustained economic growth, skilled talent and world-class infrastructure. The government has said that more than 115 lakh hectares of farmland have been brought under micro-irrigation under the Per Drop More Crop scheme as of July this year. The initiative aims to promote efficient use of water at the farm level and improve water use efficiency in agriculture. The initiative began in January 2006 as the centrally sponsored scheme for micro-irrigation. From 2015-16 to 2021-22, it was officially named Per Drop More Crop and implemented as a core component of the Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana. Under this scheme, small and marginal farmers receive 55% and other farmers receive 45% financial assistance. India Meteorological Department, IMD, has issued a red alert for rainfall conditions over Odisha for the next 2 days. The Weather Department also forecasts heavy rainfall tomorrow in places over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Chhattisgarh, Gangetic, West Bengal. Moderate to heavy rainfall is also expected tomorrow in places over Bihar, East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh, Jharkhand, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Sub-Himalayan, West Bengal, Sikkim, Uttar Pradesh and Vidarbha. And that is the end of the news bulletin.
3: अब सुनिए आज शाम हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ से। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11:10 हो रहे हैं। हमारी आज की सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल सुबह यानी कि 5:56 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।